संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कारज सच नाम सुहेला बिन शब्द है कारज के हाही खिन मह हसै खिन मह रोवै दूजा

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिंह सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले बड़ियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द न कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माही समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, कट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़ है बाहर धावे है, मन मुख अंधे साध ना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरडाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चा हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाई सच्चै नाम सदा निभलाई जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जां तिस भावै सतगुरु मलाई जां तिस भावै ता मन वसाई अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाईंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै।

सो सुख कमाए, मरण जीवन की सोजी पाए। मरण जीवन जो सम कर जाने, सो मेरे प्रभ पाएंदा। गुरमुख मरह सो है परवान, आवण जाना शब्द पछाण। मरै न जम्मै ना दुख पाए, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चै सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे,

करता आपे मन वसाईंदा। निर्मल भगत है निराली मन तन धोवै है शब्द विचारी। अन दिन सदा रह रंग राता कर कृपा भगत कराईंदा। इस मन मंदर मह मनुआ तावै सुख पल्लर त्याग महा दुख पावै। बिन सतगुर भेटे ठौर न पावै आपे खेल कराईंदा। आप अपरंपरे

आदि जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेव है से तुझ संभाव है तू आपे मेल मलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजह बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम त्याएंदा।

ना सेवह क्यों सुख पाई है, बिन लावह दुख पाईंदा, आप करे तै आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई, गुरम

गुर कै पाणे चले दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप अपाए खपाए सोई गुरमुख होवै सो सदा सलाही मिल साचे सुख पाएंदा नेक जतन करे इंद्री वासना हुई काम क्रोध जले सब कोई।

हट नाले सतगुर दिखाए अंतर नाले नावै काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारी है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिव लागी सचो सच कमावे सद ही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चे

आप बुझाए बूझे कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा, हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूके माया, अगे जम काल लेखा लेवे, जो तिन कहानी पीड़ाएंदा, पूरे भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चे सुख पाएंदा, तिन सुख पाया जो तुद पाई,

रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया कर दर नजर न आवे।

पूजै, गुर कृपा ते मन तन पीजै, रसना नाम त्याए रस पीजै, रस ही ते रस पाएंदा, महलै अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मलाएंदा, नाम वसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नावे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएंदा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा, नाम सलाहे सदा सुख पाया, निज कर

अनदिन हर सेवे हो सच्ची बाणी, हर जियो शब्द मलाएंदा, हर चेत है तिन बले हार है जाऊं, गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं, तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाएंदा, हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा, गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए, साचे नाम समाएंदा, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदनी नदर मलाएंदा, वड्डे भाग एहो शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसै बुझाएंदा, एक कित आए जन्म गवाए, मनमुख लागे दूजे पाए, एह वेला फिर हाथ ना आवे, पग खिस

गणत गुर शब्द निवारी, हर जियो हृदय रखो उरतारी, गुर कै शब्द सदा सलाई, मिल साचे सुख पाईंदा, सो चेते जिसे आप चिताई, गुर कै शब्द वसै मन आई, आपे वेखै आपे बूजै, आपै आप समाईंदा, जिन मन विच वत पाई सोई जाणै, गुर कै शब्दे आप पछाणै, आप पछाणै सोई जन निर्मल, बाणी शब्द सुनाईंदा, एह काया पवित है शरीर,

दूजे पाए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर हुए गुर

त्रै गुण पर सूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नु फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सो जी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुर बाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अन दिन वाद समाल।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई सहजी सहज मलाएंदा सच्चा महल सच्चे भंडारा।

रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला हा पाया।

पाया। जिसनो बजाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे। हम मैं मेरा ठाक रहाए, सहजे ही सच पाया। बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी। बिख का राता बिख कमावे, सुख ना कबू पाया। बहुते भेख करे भेख तारी, बिन शब्द हम मैं किने ना मारी। जीवत मरे ता मुक्त पाई, सच्चै ना इस माया। अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई, तिस दी बूझै जे गुर शब्द कमाई। तन मन सीतल क्रोध नवारी, हम मैं मार समाया।

भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सिहो चित लाया हम मैं विच सद जले शरीरा कर्म होए पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बजाई सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाई बहु संकट जोनी परमाई जम का जेवड़ा कदे ना काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारी गुर के शब्द मरे मन मारी हो मैं जाहि समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई ना होई अंतर जोत शब्द सुख वसिया ज्योति जोत मलाया पंच दूत चितवह वेकारा माया मोह कायो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारू वारा सतगुर भेटे सच दृढ़ाई सच नाम मन पाया।

सच्चे माही समाया घरै अंदर को घर पाई गुर कै शब्दे सहज सुपाई उथै सोग वियोग ना व्यापै सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरहै बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावहै दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना हुई बिन शब्द।

नाम रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। नानक तिनकी फिर गत हुए।

ज्ञान रखन मन परगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया, एह वडे आई गुरते पाई, सतगुर कहो सद बल जाई हे, प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अत भारी,

सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई, हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाई, सतगुर ते समझ पड़े मन माही, हो दयाल कृपा करा हर जीव, सतगुर की सेवा लाई है, जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता, सर्वे राव रहया सुख दाता, आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है, जिनको आद मिली वड्याई, सतगुर मन वस्या निवलाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अबनासी, सर्वे रव रहया कटवासी, तिस बिन अवर ना कोई दाता, हर तिस ऐसे

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पत राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भउ भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह

जै तै करते हर अन देन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर देबान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे मान करह तुद पावे, होर केती चक चख आवे जावे। जिनका पख करह तू स्वामी, इनकी ऊपर गल तुदे आणी हे। हर हर नाम जिन्नी सदा त्याया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी हे। तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कला उपाय तरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना। अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रभ राखे पाई हे। जी जंत को रिजक संबाही, करन कारण समरथ अपाही। खिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई हे। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया। सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे। गर्भ निवारण सर्ब सुधारन, किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता। मात पिता सुत बंधप पाई, जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पहो नहीं करना, साध संगत निश्चो है तन्ना। मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया। दुख बनास किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई हे।

कारण चमटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभे अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर

बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में है सोभ सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईसै, किस बिन दूजा अवर ना दिसै, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है, मारू सोले महला पंजवां।

तीर्थ संजोगी पय इकत्तरा करते भोग बलासाही जो पिर करै सो तन तत मानै पिर तन है सिंगार रखै संगान मिल एकत्तर वसह दिन राती प्रियो दे तन है दलासाही तन मांगै प्रियो बहु बिद तावै जो पावै सो आनंद खावै एक वस्त को पहुँच न सकै तन रहती।

ऐसा वणिज करहो ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माटी देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हों बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हों रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

पूर पंडारै कृपत रहे आगी जाहि। जाच्य है सिद्ध साधक बनवासी, जाच्य है जति सती सुखवासी। एक दातार सगल है जाचिक, देहे दान सृष्टि जाहि। करह भगत अर रंग अपारा, खिन मह थापयो थापनहारा। भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहि। जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग।

जिस चीते आवह तिस भौ केहा हवर कहां किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरै लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हमयो चोल चोल पी जाहे। मरै नाही सद सद ही जीवै अमर भया अबनासी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन भीजा है मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

न आवे हर सो किश करे जे हर क्या संता पावे कीता लोड़न सोई करायन दर फेर न कोई पाएंदा जिते आओ कट आए बनत है प्राणी किते हर त्याई सारिंग पानी जिते पुत्र कलत्र ना बेली कोई जिते हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगम अथाह क्यों मिली है प्रभ भी परवाह काट सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाएंदा हुक्म बूझे सो सेवक कही है बुरा भला दुए समसर सही है हम मैं जाए ता एको बूझे सो गुरमुख सहज समाएंदा हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी अनक रंग करह बहु भांति ज्यो पिता पूत लडाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिए जा लए मलाई गुरमुख प्रगट भया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाएंदा तू आपे करता कारण करना श्रिष्ट उपाय धरी सब तरना जन नानक शरण पया हर द्वारे हर पावे लाज।

कारना मुख सलाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहिब सगल उदारना कर कर वे कह कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संत सभा जह बैस है प्रभ पासी आनंद मंगल हर चलत तमाशे गुण गाव है अनहद धुन बाणी तह नानक दास चितारना आमन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखै खेल अपारा आप उपाय उपावन हारा अपना किया पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दोए कर जोड़ सिमरों दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे किस सलाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझ जन पए निहाला एह भगतां की कालना गुर उपदेश जपिए मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटै सब बंधन एहो भरम मोह पर जालना जह राखै सोई सुख थाना सहजे होए सोई पल माना बिनसे बैर नाही को बैरी सब एको है पालना डर चूके बिनसे अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख नरारी आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ इस कालना ऐसा कोवड़ भागी आया आठ पहर जिन खसम त्याया तिस जन कै संग तरै सब कोई सो परवार सधारना एह बख्शीस खसम ते पावा आठ पैर कर जोड़ त्यावा।

चारु महला पंजवा सूरत देख ना भूल गवारा मिथन महारा झूठ पसारा जग में कोई रहन ना पाए निःचले एक नारायणा गुरपुरे की पौ सरनाई मोह सोग सब परम मटाई एको मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपुरे ते पायना होर द्वारा कोई ना सूझे त्रे पवन तावे ता किशु ना बूझे सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना जाकी तूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता सत पुरख सत गुर परमेश्वर जिस भेटत पार परायणा पार जात लोड़ह मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोख सेवा गुरपुरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मला तू पारस जब भेटै गुरपुरा ता पारस परस दिखायणा कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एक अंकार सतगुर ते पाईऐ हौ बल बल गुर दरसायणा गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायणा गुर की महिमा वेद न जान है तो शमात सुन सुन वाखाण है पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायणा जाकी सोए सुनी मन जीवे हृदय वसै ता ठंडा थीवे गुरमुखों अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायणा संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगे धरिया सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायणा निर्गुण कहो संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहले लाए पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान देवायना भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोले

वाणी सिमरह सगले हर जना सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा सिमरह जाक दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना सिमरह पास पंखी सब भूता सिमरह बन पर्वत अवतूता लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वर्णा सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना करण करामन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सो जिना जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुरना जोनी परमुरुना गुर का शब्द वसै मन जाकै दुख दर्द प्रमता का भागे सूख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाकै मन बूठा सो पूर कर्मा नाशिना जल पल महियल स्वामी सोई अवरमा कही है दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला अवरना दिसै एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कहन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवरना कोई बिया आद मद अंत प्रभ तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत तिस निकट न आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथ ता के पूरन जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा। तुम है पठाई ता जग मह आई, जो तुझ पाणा से कर्म कमाई। तुझ ते बाहर किशु ना हुआ, ता भी नाही किस काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहां हर जस तेरा भणिए। आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खलावे है त्यों खेलन हारे। उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा। एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर। एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन संसारी कमन सो भगता। कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता। हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर धड़ा। सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मनमुख गवारा। एक ना पार लंघावह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा। कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जी जंत उपाए समाया। विखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड दा तार वड्डी जिस जाई। अगम अगोचर बे अंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा। कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा। आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा। केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया। केतड़िया दिन धुंधू कारा, आपे करता प्रगटड़ा। आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया। आपे शिव वरताई नियंतर, आपे शीतल ठार गड़ा। जिसह नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे। तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसह न आवे जम नेड़ा। कीमत कागद कही ना जाई, कहो नानक बे अंत गुसाई। आद मत अंत प्रभ सोई, हाथ तिसै कह निबेड़ा। तिसै शरीक ना ही रे कोई, किस ही बुतै जवाब ना होई। नानक का प्रभ आपे आपे, कर कर वेखै चोज खड़ा। मारू महला पंजवा, अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी। मद सूदर दामोदर स्वामी, रिखि केस गोवर्धन तहारी। मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृष्ण मरारे। जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी, जग जीवन अबनासी ठाकुर। घट घट वासी है संगा, धरनी तर ईस नरसिंह नारायण। दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, बावन रूप किया तुद करते। सब ही सेती है चंगा, श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया। बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया, सहस नेत्र मूर्त है सहसा। एक दाता सब है मंगा, भगत वचल अनाथ है नाथे। गोपी नाथ सगल है साथे, वासुदेव नरंजन दाते। वर्ण ना साको गुण अंगा, मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण। द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, कमला कंत करह कंतूहल। अनद बनोदी निसंगा, मोग दर्शन अजूनी संभव। अकाल मूरत जिस कदे नाही खो। अवनासी अवगत अगोचर, सब किश तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी, मछ कछ कूरम आग्या अवतरासी। केशव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा। निराहारी निरवैर समाया,
ਧਾਰ ਖੇਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਹਾਇਆ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵਹਿ ਦੇਣ ਸੁਣਤ ਸਭ ਮੋਹੈ ਗਾ ਬਨਮਾਲਾ ਬੇਭੂਖਨ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਮੁਕਟ ਬੈਨ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਹੈ ਧਾਰੀ ਮਹਾਸਾਰਥੀ ਸਤ ਸੰਗਾ ਪੀਤ ਪਿਤੰਬਰ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਧਣੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਪਾਲ ਮੁਖ ਭਣੀ ਸਾਰੰਗ ਧਰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਠੁਲਾ ਮੈਂ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬੰਗਾ ਨਿਹ ਕੰਟਕ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਕਹੀਐ ਤਨੰਜੈ ਜਲ ਥਲ ਹੈ ਮਹੀਐ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਪਿਆਲ ਸਮੀਪਤ ਅਸਤਰ ਥਾਨ ਜਿਸ ਹੈ ਅਭਗਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਦੁਖ ਪੈ ਪੰਜਨ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ ਭਵ ਖੰਡਨ ਭਗਤੀ ਤੋਖਤ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਣੇ ਨਾ ਕਿਤਹੀ ਹੈ ਭਿੱਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਛਲ ਅਡੋਲੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਭ ਜਗ ਮੌਲੋ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਪ ਮਲਾਈ ਆਪੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇਗਾ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਆਪੇ ਕਾਨਾ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਵੇ ਬਾਨਾ ਆਪ ਉਪਾਵਹਿ ਆਪ ਖਪਾਵਹਿ ਤੁਧ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਇਕ ਤਿਲ ਰੰਗਾ ਏਕ ਜੀਹੀ ਗੁਣ ਕਮਨ ਬਖਾਨੈ ਸਹਿਸ ਫਨੀ ਸੇਖ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਨੈ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਇਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸੰਗਾ ਓਟ ਗਹੀ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਰਨਾਇਆ ਭੈ ਭਯਾਨਕ ਜਮਦੂਤ ਦੁੱਤਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰੱਖ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸੰਗ।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्वला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा हूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत तरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामे एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोर हो खाना गिल करे आओ तो वह मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत महबत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे उथापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल सरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारे जप हर हर भो नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब ता की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका तिसह प्राप्त।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जयाल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरह रंग राती, तू समरथ बडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निदान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन मह चाह, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिये, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक घोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है तिसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदह कटह ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूपते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचरज रूप बड़ी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

गुर तीरख दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निह कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर सिउ बने आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर सिउ प्रीति उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटै मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूर्खा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे हर रखा।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस युग में नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिख विहाज है बिख संग्रह बिख स्यो तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यो चेतना लाइनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदारह भुख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधार है सहसा कदे ना जाय। नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोए खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्या जय कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याय गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पायन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याय अमृत का रस आया
मन वसिया नाहु सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत् न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराहे नानक सोहंग हंसा जप जापहु त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन पर

आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया गाफल जल्यो पाहि जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहि महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुर अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरियां पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अग्गै सकति हारिया केवै हर पाइया इक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचों बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवा अगाह कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा नानक सिज अवेहावार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मेतर हब्बे जानने अपना कहीं ना खाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारिय जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवा देखण कु मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीवसा महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौह कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै ऐसी शोभा जन की जे वड़ा हर प्रतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास जिन्ना की मैं आसड़ी

शुद्ध मार निवाड़ा गुर पौ जल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लगदियां नह खींचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखणे महला पंजवा जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्रीत हिंजा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है व्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर किरपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला पंजवा।

मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाईया। मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाईया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड ना साईया। मैं दसे हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाईया। मन अर्पे हो हौ मैं तज हो इत पंत जलाईया। नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाईया। सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाईया। तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाईया। दखणे महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह। पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा। प्रिया संदड़ी।

करोड़ जान गंधर्वा नगरी सुख कटाऊ डूए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिर है नह मिलिय भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं इन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहु गड जो चलाऊ ना थी है कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब सियो नित गर्भ फिरामी फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चल दिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचर दे फिर है संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी।

हूँ, जिन्ना महबत एक से हो ते मानस प्रधान महल्ला पंजवा। जिस मन वस्से पार ब्रह्म निकट न आवे पीर, भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी। कीमत कहन ना जाइए सच साहा अडोले, सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोले। पन्नन करन समरत है ओपत सब परले, करन कारण समरत है घट घट सब बोले। रिजक समाहे सब से क्या मानस डोले, गहर गंभीर अथाह तू गुण ज्ञान अमोले। सोई कम कमावना किया तुर मोले, तुदहो बार किस नहीं नानक गुण बोले। राग मारू बाणी कबीर जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंडिया कवन कमत तुम लागे, बूढ़ हो गए परवार सकल सिउ। राम ना जपो अपागे रहाओ, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण। खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। जी बद हो सो धर्म कर थाप हो, अधर्म कहो कत पाई। आपस को मुनवर कर थाप हो, का को कहो कसाई। मन के अंधे आप ना बूझो, काहे बुझावो पाई। माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिथा जाई। नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई। कह कबीर रामै राम छूटो, नाहे ता बूढ़े पहाई। बनह बसे क्यों पाई है जौलो मनहु ना तजह बेकार। जेहे घर बन समसर किया ते पूरे संसार। सार सुख पाइए रामा रंग रवहो आत्मै राम रहाओ। जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास। मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते होए उदास। अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माहे बिडान। ज्ञान अंजन जेहे पाया ते लोइन परवान। कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए। अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए। रिद सिद जा को खुद।

अहम्बै। कहो कबीर एक बेनती बराजियड़े, मोको भौजल पार उतारवणा हम्बै। राजन कौन तमारे आवै, ऐसो भाव बिदर को देखियो। ओहो गरीब मोहे पावै रहाओ, हस्ती देख भरम ते भूला। श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो। अमृत कर मैं मानिया खीर समान साग मैं पाया। गुण गावत रहन बेहानी कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी। जात ना काहू की मानी श्लोक कबीर। गगन दमामा बाजियो परियो निशान कहाओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पह

कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चार मुक्त चारे सिद्ध मिलके, दूल्हा प्रभु की शरण परेउ, मुक्त भयो चौहू जुग जानेउ, जस कीरत माथे शतर तरेउ, राजा राम जपत को ना करेउ, गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परेउ रहाउ, शंख चक्र माला तिलक विराजित, देख प्रताप जम डरेउ, निरपौ भय राम बल गर्जित, जन्म मरण संताप हिरेउ, अमरीक को दियो अपै पद, राज पपीखन अधिक करेउ, नौनिध ठाकुर दई सुदामे, त्रू अटल अजहू न तरेउ, भगत हेत मारेउ हरनाखश, नरसिंह रूप होए दे तरेउ, नामा कह भगत बस केसव, अजहू बल के द्वार खरो, मारू कबीर जियो, दीन बसारे उरे दीवाने, दीन बसारे उरे, पेट भरेओ पशुआ ज्यो सोयो, मनुख जन्म है हारेओ रहाओ, साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचेओ तंदे झूठ, स्वान सूकर बाइस जिवे, भटकत चालेओ ऊठ, आपस को दीर्घ कर जान, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्म ना, मैं देखे दोजक जात, कामी क्रोधी चातुरी,

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया अबाल बाल तोड़िया अचल चल थपिया अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया मन आद गुण आद वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया कबीर मारू राम।

राग मारु बाणी रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा, माते शतर तरे रहाओ। जाति शोत जगत को लागे, ता पर तू ही तरे। नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तनोचन सदन।

सुख सागर सुरतर चिंता मन काम धेन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल तां कै हर हर हरना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी तुखारी संत महला पहला बारह माहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सुन किरत करमा पुरब कमाया सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी ना जीवा प्रिय बाज दहेली कोए ना बेली गुरमुख अमृत पीवा रचना राच रहे निरंकारी प्रभ मन कर्म सुकर्मा नानक पंथ निहाले सा धन तू सुन आत्म रामा बाबीहा प्रियो बोले को किल बाणिया सा धन सब रस चूले अंक समाणिया हर अंक समाणी जा प्रभ पाणी सा सुहागण नारी नव कर थाप महल कर ऊंचो निज कर वास मरारी सब तेरी तू मेरा प्रीतम निसबासुर रंग रावे नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा कोकिल शब्द सुहावे तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने मन तन रवतर वन्ने घड़ी ना बिसर क्यों घड़ी बिसारी हौ बलिहारी हौ जीवा गुणगाई ना कोई मेरा हौ किस फेरा हर बिन रहन ना जाए ओट गही हर चरण निवासी भये पवित्र शरीरा नानक दृष्ट धीरग सुख पावे गुर शब्दी मन धीरा बरसै अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुभाए हर सिओ प्रीत बणी हर मंदर आवे जा प्रभ पावे तन उभी गुण सारी घर घर कंत रवै सुहागण हौ क्यों कंत वसारी उन्नव घन छाए बरस सुपाए मन तन प्रेम सुखावे नानक वरसै अमृत बाणी कर कृपा घर आवे चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी बन फूले मंज भार मैं फिर घर बहुड़ै फिर घर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे बिरह विरोध तन सीजै कोकिल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सहीजै पवर पवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वार घर तन पाए वैसाख भला साखा वीस करी तन देखै हर द्वार आवुह दया करी कर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड न मोलो कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे ढोलो दूर ना जाना अंतर माना हर का महल पछाना नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन माना माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे थल ताप है सर भार सा तन बिनो करे तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी गुण सारी प्रभ पावा साचे महल रह बैरागी आवन देहे ता आवा ने माणी ने ताणी हर बिन क्यों पावे सुख महली नानक जेठ जाने तिस जैसी कर्म मिले गुण गहली असाड़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सुख है अगन पख है अगन रस सुख है मरिय धूख है पी सो किरत नहारे रथ फिर छाया तन ताक है तीद लवे मंज बारी अवगण बांध चली दुख आगे
सुख किस साच संभाले, नानक जिसनो एहो मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले, सावन सरस मना, कण वरस है रूते आए, मैं मन तन सहो पावे, फिर परदेस सिधाए, फिर घर नहीं आवे, मरिए हावे, दामन चमक डराए, सेज अकेली खरी दोहेली, मरण पया दुख माए, हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सखावे, नानक सा सुहागन कंती, फिर कै अंक सुमावे, पादो परम पुली, पर जोबन पछताणी, जल थल नीर भरे, बरस रुते रंग माणी, बरसै निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रियो प्रियो चवै बबीहा बोले, पोयंगम फिर हैं दसंते, मच्छर डंग शायर भर सपर, बिन हर क्यों सुख पाई, नानक पूछ चलो गुरे अपनी, जह प्रभ तह ही जाइए, असन आओ पिरा सा तन झूर मुई, ता मिलिए प्रभ मेले दूजे पाए खुई, झूठ बिगुती ता फिर मुती, कुका कहा से फुले, अगे काम पिछे रुत जाडा, देख चलत मन डोले, दह दिस साख हरी हरियावल, सहज पक्कै सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर पए बसीठा, कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया, दीपक रस तेलो तन पिर मेलो, तन अमा है सरसी, अवगुण मारी मरै ना सीजै, गुण मारी ता मरसी, नाम भगत दे निज कर बैठे, अजहो तनाड़ी आसा, नानक मिलहो कपट दर खोलहो, एक घड़ी खट मासा, मगर माहो भला, हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे, मैं फिर निश्चल पावे, निश्चल चतुर सुजान बधाता, चंचल जगत सवाया, ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे, प्रभ पाणे ता पाया, गीत नाद कवित कवे सुन, राम नाम दुख भागै, नानक सा तन नाह प्यारी, अब भगती फिर आगै, पोख तखार पड़ै, वन तृण रस सूखै, आवत की नाही, मन तन वसह मुखे, मन तन रव रहे आ जग जीवन, गुर शब्दी रंग माणी, अंडज जेरज सेतज उत पुज, कट कट जोत समाणी, दर्शन देहो दया पत दाते, गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया, हर सिओ प्रीत स्नेहो, माघ पनीत पई, तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले, गुण गह अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद पावा सर नावा, गंग जमन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा, पुन दान पूजा परमेश्वर, जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारास हर जप, अठ सठ तीरथ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अन दिन रहस पया आप गुआया, मन मोह चुकाया जा किस फाया, कर कृपा कर आऊ, बहुते वेस करी पिर बाजू, महली लहा ना थाऊ, हार डोर रस पाट पटंबर, पिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेल लई गुर अपनै, घर वार पाया नारी, बेदस महा रुती थिती वार भले, घड़ी मूर्त पल साचे, आए सहज मिले, प्रभ मिले प्यारे कारज सारे, करता सब बिद जाने, जिन शिंगारी तिसह प्यारी, मेल पया रंग माने, कर सेज सुहावी जा फिर रावी, गुरमुख मस्तक भागो,
नानक ऐन सरावै प्रीतम हर वार फिर सोहागु। तुखारी महला पहला, पहले पहरे नैन सलोनड़िए, रैन अंधियारी राम।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूजै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइये, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मूर्ख

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया तावत पंच रही।

चूकी अभमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगति जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

ते मन मानिया जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया सो प्रभ गुरमुख जानिया करन कारण समरथ अपारा त्रे विद मेट समाई नानक अवगुण गुण।

होई प्रगट होई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपै पेयड़ घर शब्द पतीनी सहुरड़ पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला पुलावड़ भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोडियाड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदण राती काम क्रोध अहंकार विगुती हों मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया पसम पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी भुल भुल पछो ताणी सुन नाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज कर वस्याड़ा हौ रुल भसमै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कहिए क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

साची सच मत तेरी साजन देस वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिले विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रोस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी।

लाल रंगी ले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया हवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंते पाए नित देव चढ़ सवाया अपरंपर आपे थाप उथापे जिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया।

ही राम गुण गाए राम रसाए रसिय है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन बिन गुरु गोपाल ते आई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजल तारिय राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड़ निस्तारिय राम, हम मूड़ मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुन तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग हैं सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, काया गढ़ सोहया मेरा प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास बसारी, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हौ सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देऊं, जे सतगुर साचे।

आपे दया करहु प्रभ दाती। नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा। जो तुम प्यावह जगदीश ते जान पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरिया सोहिला, जिन हर हर नाम त्याया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर धरनी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा। तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया। तू अलख अपेयो अगम, गुर सत गुर बचन लहया। धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जां बह गुरमुख हर नाम बोल है, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया। तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया। सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अराध्या। तिनका जन्म सफलियो सब किया करतै, जिन गुरबचनी सच भाखिया। ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे। सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हरियाप, ज्यों तू चलावह प्यारे, हों तिवें चलना हमरे।

सुन प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का नानक दास तां कह बलिहारी मिले नाम हर निमका केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी अगम अगोचर ना जाई हर लखिया गुरपुरा मिले लखावी रे रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लावी रे सब को भगत करे हर केरी हर पावै सो थाए पावी रे हर हर नाम अमो

देख गऊ सुख माने त्यों नानक हर गल लावी रे। केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे सतगुरु के चरण धोए धोए पूजो इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन। हर राम नाम राम रम हो रे अंतर का अभिमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमर।

दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं उपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंधन करना पति भव हरन हर हर हर हर।

मद मोहक काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी अनाथा के नाथ रहाउ। सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ। नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उधर सागर के खात। सरल समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ। नानक दीन धूर जन बाछत मिले।

मन ते हरी अब ए प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्र मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी।

और रहाउ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारु तूर संत संग हर चरण बोहित उदर तेल मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

रहाऊ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार। रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार, नानक।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाओ, खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत, आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत, ताज गोपाल जे आन लागे से।

पूर रहया सर्वत्र मैं सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु ना जाए न खेदिया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

या निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपे है रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै ता मन खीवा पाई

भाऊ भगत स्यों काज न कछु है, मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान। कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान, रहाव लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औध बिहान। कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाव। गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए। मरहत लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए। कहत कबीर राम की ना सिमरहो, जन्म अकारथ जाए। राग केदारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही। चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी हर जप जन्म गयो। साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हों ममता, कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया। रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी। प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी। भैरों महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे। तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पये बहरे। मनमुख नाम ना जानी, अंधले क्या पाया जग आई। राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ। जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही। दिन सजन जाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी रहाओ। ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर तंदा। काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे। शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने। भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावै। आप मार

पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाउ पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया राम नाम बिन त्रिपत ना आवे किरत कै बांधे भीख भया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया राग भैरो महला तीजा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ चारी वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा पंच तत् मिन देही का अकारा घट वध को करे बीचारा कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसै कोई रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत

आप उदरे सब कुल उदाहरण हार बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे औखे होवै चोटा खाहे आपे करता देवै सोए नानक नाम प्राप्त होए भैरू महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द बीचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए पूरे गुर मेलावा होए निज कर वसै सहज सुभाए

हर का नाम निधानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा इको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझे है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाउ। मनमुख मूल गवावे है लाभ मांग है लाहा लाभ किड्डू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवै दिन राती हमे रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजे है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाए खुआई। उदर नै सान ना परियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाए।

समाए गुरमुख ज्ञान तत बीचारा ज्योति ज्योत मलाए सो प्रभ साचा सद ही साचा साचा सब आकारा नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा भैरव महला तीजा कल मैं प्रेत जिनी राम ना पछाता सतयुग परमहंस बीचारी द्वापर त्रेतै मानस वरतै विरलै हो मैं मारी कल मह राम नाम वडियाई

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया मान जो किस कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाउ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेविया दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहा पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार ज्यों तिस पावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मनमुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमावे कूड़ो होए सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोई।

तह हर प्रभ सोई सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई जिस कहो तुम हर राखिया पावे तिसकै नेड़ कोई ना जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर भैरों महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूरत जिस हिरदय हर नाम मरार मस्तक भाग होवै जिस लिखिया सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार मधसूदन जपिया उरतार देही नगर तस्कर पंच धातु गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ जिनका हर सेती मन मानिया तिन कारज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूरत ता किश कीजै जे किश होवै हर बाहर जो किश करे सोई भल होसी हर त्याव हो अन दिन नाम मरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओह पूछ ना किसे करे बीचार नानक सो प्रभ सदा त्याई जिन मेलिया सतगुर कृपा धार भैरों महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जपिया गत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिगसै खिन खिन तिनको हों बलिहारी हर हिरदय जप नाम मरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दासन दास की जय पनेहारी रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम जिन हिरदय वसिया बनवारी तिनकी सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते हर दरगाह काढे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावह तिन नक काटे सिरजनहारी हर आप बुलावै आपे बोलै हर आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिल है सो तुद मिलसी जन नानक क्या एह जंत विचारी भैरों महला चौथा सत संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्री मह नित चरनी जग जीवन हर त्याए तरनी अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाई जेवायत गणने रहाउ गुरसिख हर बोलो हर गावहु ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख कने धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दरगाह हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर धरनी नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवनी भैरों महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगली थीत पास डार राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचराएन जन्म मरण तेरैत नारायण रहाउ कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देहे लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म ना मरे ना आवे ना जाए नानक का प्रव रहो समाए भैरों महला पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहाउ सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरों महला पंजवा वर्त ना रहो ना महरमदाना
तिस सेवी जो रखे निधाना एक गुसाई अल्लोह मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाउ हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना नवाज गुजारो एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना पैरू महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ियो शिकार मृग पकरे बिन घोर हथियार रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो कर कै गाए मृग पकरे कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कै कर केवल नाम पैरू महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत नाया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पाथर कौ बहु नीर पवाया नह पीजै अधिक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यों साकत ते को ना ब्रासाया कित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया पैरू महला पंजवा जियो प्राण जिन रतियो शरीर जिन्ह अपाए तिस को पीर गुर गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत हीत धन नह पारना तन तन मेरे नारायणा।

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोहण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत

नानक दास एहो किया बीचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। भैरो महला पंजवां, लेप न लागो तिनका मूल, दुष्ट ब्राह्मण।

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्ब कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरू महला पंजवा, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाउ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरध प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरू महला पंजवा, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञान, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पए सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यासै पेख्यो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेख्यो नट नाटक निरताई चहो मह पेख्यो खट मह पेख्यो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरू महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरबिह रह मिथ्या कर खाय पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम भुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्तु संतर जाए बाज गुरु है परम भुलाए जिस मस्तक कर्म लिखिया लीला।

अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोई। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुवे बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाय, क्या कड़िया जा रहया समाय, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस हुए तिंगाने, तव कड़िया जे पूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यो पावे त्यो करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई, पहरू महला पंजवां।

बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहाँ को बकता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेखै, नाम बिना नर कहीं ना लेखै, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हौ त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान,

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

फिर जो नी परमै रोग बंद रहन रती ना पावै बिन सतगुरु रोग कतह ना जावै पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहां पकड़ रोग हो काड लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया पैरों महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता सदा निहाल चीत आवे ता सद तनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणी चीत आवे ता चूकी काणी चीत आवे ता सहज घर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा अविनाशी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

अंते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर पए दयाला। नानक दास देख पए निहाला, पैरू महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरू महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

मोहे दुहागने आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिटयो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम, जा को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना, कहो नानक जो

पियावे बेसवा भजत किस नह शरमावे सारू दिन समजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर परे माया लग भूलो संसार आप भलाया भलावन हारे राज रहिया बिरथा व्यवहार रहाउ देखत माया रंग बिहाई गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार न जी मह आवे करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरों महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जप हो नित पाई तार लए सागर संसार रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान सीजन दरगाह पावह मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावे थाओ जुगह जगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी मैं माया पे जाप जी जंत सब तेरे हाथ नानक।

रोम रोम रव्या हर नाम, सतगुर पूरा कीनो दान, नाम रतन मेरा पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारा निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारा पूरा साह, नाम हमारा बेपरवाह, नाम हमारा

की आस्था, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होई, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाऊ, त्रिविद माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन री जावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

अणहुंडा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निरवैर सो निस्तर जो पूजै पैर आद पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरों महला पंजवां नाम हमारे वेद अरनाद

मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहि निर्मल मना।

नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत

रहाउ। संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाउ। जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई पैरू महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई पैरों महला पंजवा गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारी नाम औखद मन पीतर सारी गुर पेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी पैर।

आवण जान रहे हर त्याय, भगत पाए प्रभ की लिव लाए। बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की तेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। कर्ण करावनहार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी।

का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजै नहीं भूख, रोग जाए ता उतरह दुख, काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करणै हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवां, गुर सो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महा परेत, आठ पहर हर हर

नानक पाया नाम निदान पैरों महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भजन अवनासी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत देखो तेरी सरना बल बल जाई सत

रोग सब किस तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुरे अगम अपार निर्मल सोभा आचर्ज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रव्या सोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने आठ पहर गावत भगवंत।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन, तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन इहो परखारथ, प्रभु हमारा सा

त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

नहीं पंग, पैरों महला पंजवां। निंदक को फिटके संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को राखनहार। निंदक मुआ निंदक कै नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ। निंदक का कहया कोई ना मन, निंदक झूठ बोल पछताने।

पिंड तन तिसकी रास सोई मेरा स्वामी करनै हार कोट बार जाई बलिहार साधु तूर पनीत करी मन के विकार मिटह प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ जाकै ग्रह मह सगल निदान जाकी सेवा पाई है मान सगल मनोरथ पूरन हार जी प्राण भगतन आधार कट कट अंतर सगल परगास जप जप जीव है।

मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को

काल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख निमख अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिट है जस सुनी नानक सेव अपार देव तटह खटह बरत पूजा गमन पवन जातर करन सगल फल पुनी पैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटै हो मारा नानक हो मैं।

ताक ना हुई जिनको नदर भई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरदरा रोगी सगल संसारा हर पद चीन भये से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद सनदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका बेदक तेव करह कह बपरी नह बूझह एक एका मिठरा सखाए सो रोग परीजै कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही तीरथ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द।

मन साचा तिस रोग गया। नानक हर जन अन दिन निर्मल, जिन कौ कर्म निशान पया। भैरो महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिन करता एक चलते उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया। मनमुख फूले गुरमुख बुझाया।

सब लगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक

माता नर सिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निधान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

पड़े आई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती ना राई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद पावे सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद तंदे लाया, पूंदी कार कमाई। जन्म पदार्थ जुए हारिया, शब्द सुरत ना पाई। मन मुख मरह तिन किशु ना सूझे, दुर्मत अज्ञान अंधारा। पवजल पार न पावे कब ही, डूब मुए बिन गुर सिर पारा। साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मलाई। गुर की वाणी शब्द पछाती, साच रहे निवलाए। तू आप निर्मल, तेरे जन है निर्मल। गुर कै शब्द विचारे, नानक तिन कै सद बलिहारे। राम नाम उर तारे, पैरों महला पंजवां। अष्टपदियां घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तिस सलाही जिस हर तन रास, सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाउ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना। जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीव।

परवाहा। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।

अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाय, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माही, कोट नाम जाकी कीमत नाही, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देवै आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थारन अवरना दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो उपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट अंतर जामी।

गुनोद चोज अनंता, नानक को प्रभ मिलियो अचिंता। कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर किस संग मन राची। रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा। अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे। अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। भैरों बाणी भगतां की।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कत है ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो,

आख जतन करे ओहो चेतना तरे रहाउ, जो निरतन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए, जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए, निर्धन सर धन

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिष्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या घट जाई कहत कबीर हौ कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे

जाती। साकर माखी अधिक संतापी, तुरे उष्ट माया मह पीला, सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला, शे जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरज अरचंदा, तपेर खीसर माया मह सूता, माया मह काल अर पंच दूता, स्वान स्याल माया मह राता, बंतर चीते अर सिंगाता, मां जार गाडर अर लूंभरा, बिरख मूल माया मह परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा।

मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही, तब लग

हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिव लाए, सतर साई सलार है जाकी, सवा लाख पैकंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे, रहाउ ते 30 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिरे दीवाना, बाबा आदम को

सबं का पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जान गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सात संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को धरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत, अर्ध उर्द

मन अस फिर करे कह कबीर सो प्राणी तरे कोट सूर जाके परगास कोट महादेव अर कबलास दुर्गा कोट जाके मर्दन करे ब्रह्मा कोट बेद उचरे।

फिर है, बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथार है पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोटक लक्ष्मी कर श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिर, इंद्र कोट जाके सेवा कर, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लाख

पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना पजंते नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामै दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राए दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामै हर आगै धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ता को करो शिंगार भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

सर्ब जाई उस्तत निंदा करे नर कोई नामे श्री रंग पेटल सोई कबहू खीर खान की हो ना पावे कबहू घर घर टूक मगावे कबहू कूर्ण चने बिनावे ज्यों राम राखे त्यों रही है रे भाई।

फिरै, भगत जना को देहुरा फिरै, भैरों नाम देव जियो कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसी।

संडा मर का जाए पुकारी, पड़े नहीं हम ही पाचहारी। राम कह करताल बुझावे, चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरे। रहाव बसदा बस कीनी सब राजी, बिनती करे पटराणी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो और ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै को पियो, मोहि बताओ जो तुहे राखे। पीत पितांबर त्रे पवन तनी, थंब माहे हर पाख। हर नाखश जिन नखह बदारे हो, सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहो हम नर हर त्याव है। राम अपै पद

अहंकार, गाजहस्ती दीनो चमकार, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना पजै खुदाए, ना हो तेरा पूंगड़ा, ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

सोहे जब मटकी परी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की कट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस

गुरुदेव तो हाथ साठ नहाया, जो गुरुदेव तन चक्कर लगाया, जो गुरुदेव तो द्वादस सेवा, जो गुरुदेव सब बेख मेवा, जो गुरुदेव तो संसार टूटे, जो गुरुदेव तो जम के छूटे, जो गुरुदेव तो भोजन तरे, जो गुरुदेव तो जन्म ना मरे, जो गुरुदेव अठ दस व्यवहार, जो गुरुदेव अठारह भार, बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई, नाम देव गुर की शरणाई, भैरो बाणी रविदास दियो की कर दूजा।

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कैर मैया नेड़ नाए जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

हुए तीर्थ पवैद संतर लोए नानक मिलिया सतगुर संग तौ पवजल के तू तस बंद बसंत महला पहला।

बिन साधना पाईऐ हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए, जाको तू राख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब

अमृत नामा महला पहला बसंत हंडोल घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बिप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बंद हो दया करहु दयाला काहे कलरा सिंचो हो जन्म गवाव हो काची तहग दवाल काहे गच लाव हो रहाओ कर हरहत माल टिंड परोव हो तिस भीतर मन जोव हो

मति इन बिद पावो प्राणपति रहाओ पीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया चंद सूरज दुए कर ही पीतर ऐसा ज्ञान ना।

अत पुलहरे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाइय नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाइय बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाइय कर्म मिले हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेख प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिले वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थिए बसंत महला तीजा कर कहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब जी जंत क्या हो आखा किरम जंत तेरा किन न पाया आदि अंत तै साहिब की करह सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म हुआ ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देख अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाना आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुर

प्यारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारे जन नानक और हरि अमृत तारी।

मन आई। बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाई, मन तन हरिया सतगुर पाई, सफलो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुपाई, सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द वेखै सद हजूर, शाम घणी फूली बन राय, गुरमुख बिबसै सहज सुपाई, अन दिन कीर्तन करह दिन रात, सतगुर गवाई विचों जूठ परांत, परपंच वेख रहया विस्माद, गुरमुख पाईऐ नाम प्रसाद, आपे करता सब रस भोग, जो किछ करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिन नात माई, नानक मिलिया शब्द कमाई।

नाम रत्ता जन प्रगट हुए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचे पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा हुए, जिन सच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई, पूरे

मन निर्मल निर्मल सच सोए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक संजान, हर रस चाखै तां शुद्ध होए, नानक नाम रते सच सोए, बसंत महला तीजा, नाम रते कुलां का करह उधार, साची बाणी नाम प्यार, मनमुख भूले काहे आए, नामो भूले जन्म गवाए, जीवत मरै मर मरन सवारै, गुरु कै शब्द साच उर धारै, रहाउ गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए,

मन मौलिया हर गुण दाता नाम बखाने रहाऊ भगवै वेस भ्रम मुक्त ना हुए बहु संयम शांत ना पावे कोई गुरमत नाम प्राप्त हुए वड भागी।

नानक शांत होए मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई। हम कीरे किरम तुमन से, हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा। गुर सत गुर चरण हम बनसे, गोविंद जीओ सत संगत मेल कर कृप से। जन्म जन्म के किल विक मल भरिया, मिल संगत कर प्रभ हंसे रहाओ। तुमरा जन जात अव जाता, हर जपियो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सुबा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक परयो थन माता। थन काढ़े बिलल बलीदे, गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीते। ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हों मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचर हो ठाकुर, तुम पैज रखो हो अपनीदे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवै। तिल घर नहीं वासा पाईऐ, गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो। घर मंदर आन वसाईऐ, गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईऐ। हों मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईऐ रहाउ। कर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमिया लह ना सकाईऐ। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै, त्यो सतगुर वस्त लहाईऐ। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईऐ। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईऐ। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईऐ। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईऐ। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान पया दुख बिखिया।

दुख पानी। हर उस्तत धारु होरे दे अंतर स्वामी, सत संगत मिल बुद्ध लाई। हर नामै हम प्रीत लगानी, हम हर विट हो घुम वाई। जन के पूर मनोरथ हर प्रभ, हर नाम देव हो हर लाई। जन नानक मन तन आनंद भया है, गुरमंत्र दियो हर भाई।

देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुण है गाई जन नानक हर हर हर त्याई।

नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हों पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण ए दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोज है सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा

जो हरे बूटा साध संगत त्यो हों मैं छूटा जैसी दासे तीर मीर कैसे उदाहरण गुर है पीर तुम दाते प्रभ देन हार निमक निमक तिस नमस्कार रहाउ जिसह परापत साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पए मुकत भगत आराध है।

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम तोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग हो हे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

सर्ब ध्यान मह एक ध्यान, हर कीर्तन मह उत्तम धुना, नानक गुर मिल गाए गुना, बसंत महला पंजवा, जिस बोलत मुख पवित होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस अरादे

जिसके धारे तरन आकाश घट घट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लग हो सेव आद पुरख जिसकी आदान तिसको मिलिया हर निधान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवा मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जप्यो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना रहाउ समरथ स्वामी कारण करन मोहे नाथ प्रभ तेरी शरण जी जंत तेरे आधार

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो।

प्रभु आप रखी, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताई, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोई, प्रभ दास रखे कर जतने आप,

पंजवां गुर चरण सरे वत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्ब मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चेते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया रब मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवां किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे।

कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां

कहां पकर भवजल निसतारियु प्रभ काट मैल निर्मल करे गुरपूरे की सरणी परे आप करह आप करन हारी करके

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी तुम मिलो हो प्रभ सुभागी हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाई जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामे के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाई इन बिद

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी घर आया।

लीन सब दुख सखाई गुण है बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख तू आपे सुरता आप राख तर धारण देखे जाने आप आप भलाए।

लो कदे नाही गुर शब्द सुनाए मत अगाए तू मोटो ठाकर शब्द माही मन नानक मानिया सच सलाही बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर हुए एकत राचे पर हर दुई दूर दर्द मत अमृत खाए गुरमुख बूझे एक समाए तेरे दर्शन को केती बिल लाए।

तारा, दुख घणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किसे आखो ही ना, हर भगती सच नाम पतीना, रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाते।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार मन अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना भागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते अपाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझ है जिस गुर करतार गुर

आपे बशरु गऊ खीर, आपे मंदर थम शरीर, आपे करनी करनहार, आपे गुरमुख कर विचार, तू कर कर देख करनहार, जोत जी असंख दे आधार, तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करन जोग, नेह केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद, बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार कर, महलत चार बहाली, चारे दीवे चौं हथ दिए, एकाएका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिखदारी, धरती देग मिले एक वेरा, भाग तेरा पंडारी, ना साबूर हुए फिर मंगै,

चारी कुंट सलाम करहंगी, घर घर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड्याई, मेका घड़ी संभाली, बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, हिन पल फिर न रहाई, अनक अपाव जतन कर थाकी, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन, सतगुर मिले ता पूरा पाईए, पज राम नाम निशान रहाउ। एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हो आरसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल पए हैं, ज्यो कृष्ण बिदर घर आया, मिले उस दामा पावनी तार, सब किसे आगे दालद पंज।

रहम खीली एक रत्ती तिल ना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तिल अपने घर लूकी लाई जन को जन मिल सुबा पावे गुण मह गुण परगासा मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन।

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गनका उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय।

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करन तव नह संगाई।

काम क्रोध मन वास किया, सुपने नाम ना हर लिया, कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार, मन उधर्म का साज नाहे, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे, जा कह कीन होत बेकार, से छोड़ चलिया किन मह गवार, माया मोहे बहु परमिया, किरत रेख कर करमिया।

अपार कर कृपा लड़ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई। बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माहि समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाऊ एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चुआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

कैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता

हों तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाडुली रहाउ धोबी धोवै बिरह बराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देओ राम रहिया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कशु नाही पहरावा देखे ऊब जाए गर्भ

रूब राज तू तिस ते खरी उतावली रहाउ, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढै परदेस, आप तन काजो करे बीचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर, उत्तर कलत्र का करह अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसह पकार है पियो पियो, साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिट है पाप सब कोट कोट, कहर वदास जो जपै नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल, इस कर्म है।

पहला घर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद अपने ठाकुर की हौ चेरी चरण गहे जग जीवन प्रभ के हौ मैं मारन बेरी रहाउ पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे लिया मन मेरा समझस शब्द बिचारी मन मुखहीन होची मत झूठी मन तन पीर शरीरे जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे हौ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी अकुल निरंजन स्यों मन मानिया बिसरी लाज लुकानी पूर भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा।

हर बिन क्यों रहिए दुख व्यापे, जिहवा साध न फीकी रस बिन, बिन प्रभ काल संता पै रहाऊ। जब लग दर्शन परसे प्रीतम, तब लग भूख प्यासी, दर्शन देखत ही मन मानिया, जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजे बरसे, कोकिल मोर बैरागे, तरवर बिरख बिहंग पोयंगम, घर पेर तन सोहागे। कुचिलक रूप कुनार कुलखनी, फिरका सहज ना जानिया, हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति, दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे, ना दुख दर्द शरीरे, नानक प्रभ ते सहज सुहेली, प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला, दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा, सतगुर बचन मेरो मन मानिया, हर पाए प्राण अधारा रहाऊ। इन गिद हर मिलिया वर कामन, तन सुहाग प्यारी, जात बरन कुल सहसा चूका, गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको, हिंसा लोभ वसारी, सहज रवे वर कामन पिरकी, गुरमुख रंग सुवारी। जारो ऐसी प्रीत कटंब सनबंदी, माया मूप सारी, जिस अंतर प्रीत राम रस नाही, दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को, दुरै न लाल प्यारी, नानक गुरमुख नाम अमोलक, जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संत जना की हम धूर, मिल सत संगत परम पद पाया, आत्म राम रहया भरपूर रहाऊ। सतगुर संत मिले शांत पाईए, इन विख दुख काटे सब दूर, आत्म ज्योत पई परफूलत, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे भाग सत संगत पाई, हर हर नाम रहया भरपूर, अठ सत तीरथ मज्जन किया, सत संगत पग नाए धूर। दुर्मत बिकार मलीन मत होशी, हिरदा कसुद्ध लागा मोह कूर, बिन कर्मा क्यों संगत पाईए, होमै व्याप रहया मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी, मांगो सत संगत पग धूर, नानक संत मिले हर पाईए, जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा, गोबिंद चरणन को बलिहारी, भवजन जगत न जाई तरना, जप हर हर पार उतारी रहाऊ। हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी, सेवा सुरत बिचारी, हर दिन राम नाम जप हृदय।

लखारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तार साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबू बूझ जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर पई है।

मुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगै तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगै गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख दुवारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै भाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई। रहाउ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाद लगाई। हिरदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाई। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलया सुख पा।

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ। हर का नाम अमृत हर हर हरि, सो पिया जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु, सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि, इनका सब दुख भरम पहु जासी। जन नानक नाम लए ता जीवै, ज्यों चात्रक जल पिया त्रिपतासी। सारंग महला चौथा, जप मन श्री राम। राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम राम। रव रहया सर्वगे रहाउ, राम आपे आप आपे सब करता। राम आपे आप आप सबत जगे, जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय। सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो। जो भगत जना की पात राखै, बिच कल युग अगे। जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दुख गए सब भगे। सारंग महला पंजवा, चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर मूर्त कहो बल जाओ। अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की, सफल दर्शन कद पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक, भगत वत्सल हर।

रह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की तू

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजो, मूर्त घरी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अंबे अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यों उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यों तस्कर दरसानेहा आन अपाओ न को सूजै हरदासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिया जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै ना लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक शिंगार रे बिन पिर सबै बिख लाग्यो पूछो पूछो दीन भांत कर को कह प्रिय देसांग्यो हियो देओ सब मन तने अर्पो शीस चरण पर राख्यो चरण बंदना मोल दासरु देओ साध संगत अरदाग्यो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खाग्यो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सार महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहाओ निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खतह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाऊ जहां बीसरे ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पाव दीजै साध संगत कृपानंद नानक पूर रहो है सर्व मैं सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते भवह तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़

आई सारंग महला पंजवा ओए सुख का स्यो वर्ण समावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ विषम पई पेख बिस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमूलक ज्यों चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूज न आवत जावत जां को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन अपाव जेते किस कही है तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्लो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस स्यों।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुश्कार है गिरियो जाए रसातल परियो सिति सिति सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसे धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परा।

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु विद उमकाई रहाऊ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एहो मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शन खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाउ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई जेहे प्रसाद मिलिए प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई सार महला पंजवा वाह अवसर कह हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाउ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई संत प्रताप भरम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवे तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किलबिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्स प्यास सार महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहान भाई है।

यह अधावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की थाहरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सारंग महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याई रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आरना बियो लवे लाए मात पिता भाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे रहाओ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में है ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचै नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलख सुख साध समागम कोट बैकुंठ है पाए रहाऊ दलाब दे जप होत पनीता जम की त्रास निवारे महा पतत के पातक उतर है हर नामा उरतार है जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाईए वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारंग महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राखियो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परयो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जहते उठियो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देस प्रिय रोम ना समसर लागै रहाऊ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यो दृष्ट न करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुग्र सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा बिसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाऊ बिखमथान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानथ पए लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यों जल मीना रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तो मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है।

दुख सहामा गोबिंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सार महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहंग रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समरथोहं सारं महला पंजवा नैन हूं देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट

द्वार बना है भक्त वत्सल गुण तासा अंध कूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जीता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बस्यो मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब नदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुर पूरा भेट्यो सुख सहजे आनंद बिहावा सार

अनंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तुही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया भयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुरदर साया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

चतुर अनूप बधाते तिस स्यों रुच नहीं राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करै मह पाई कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवां वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद चिन्मय खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार महला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहा गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा आनंदाई प्रतपाल बारक की न्याई जैसे मात पिताई किस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाईए आस न अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याईए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरणी पाईए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाइए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाईए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताईए सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ

ते हरेउ तूहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाटली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरै तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाइय वडभागी नानक संतन कै कुरबान। सारू महला पंजवा करो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रम ते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जाने आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारू नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो।

लै चल हो सुख सेती कर जाव हो सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया रहा।

समाए आनंद आनंद गुण गाया बाहां पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंध कूप ते माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिचरत आन मलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाव सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तौ फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्चर हो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मानो साचा एह सुआओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यों लिव लाओ कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपयाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाओ पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी मन बाछत चितवत नानक दास पेख जीवा प्रभ चरनी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाइय अहनस पूर्ण नाद रहाव सिमरत शांत महा सुख पाइय मिट जाहे सगल बिखाद हर हर लाभ साध संग पाइय कर लै आवलाद सब ते ऊच ऊच ते ऊचो अंत नहीं मर जाद वर्ण ना साखो नानक महिमा एक रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

कहाउ समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लै हो हर हृदय अराध हो छुटकै आवन जानी उदम सकत सियाण पुतुमरी

कीता जगदीश भजन सुख ध्यान तेरे शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ बलबंच करै ना जानै लाभ है सो तूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरजानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातरक की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटे काल जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख ले हो दास अपने को सदा सदा किरपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार नाम निदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख घोरी रहाओ हर के नाम स्यो प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी तू तत बार न लागै तां को ज्यो गागर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिन्यान न होरी सारंग महला पंजवा चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाओ बिन हर भजन जेते काम करियह तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु लाहे चरण कमल नानक मन बेदेहो चरण है संग समाहे सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी आग्या कुशल पाशै खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ साजन मीत सखा हर मेरै गुण गोपाल हर राया बिसरना जाई निमुख हृदय ते पूरै गुरु मलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाकै एका लिव पूर्ण परमेश्वर पौ नहीं नानक ताकै सारंग महला पंजवा जाकै राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण।

तिस सोए उद्म करूं दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए सारू महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ मन तन धन सब।

तेरी सरनाई जो भावे तिवें चलाए सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दी सह शार रहाव ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सार महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नासी।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रवार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई कव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याय परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर न पय बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादे सिर उठाई पोट उगर गन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गैया हाट किल बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जानकार आखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ उसका कहया कोए ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सुख न सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम करो दहजार संसार सागर दुख ब्यापियो दास ले उतार चरण कमल सरनाए नानक सद सदा बलिहार सारंग महला पंजवा रे पापी तै कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत खीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद बिकार भांदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवा माई रे चरण है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ
अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात न कही जल थल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारो पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रप्यो खुमारू रहाओ निर्मल पये उजल जस गावत बहोर न होत कारू चरण कमल स्यो डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारू कर गहलीने सरबस दीने दीपक भयो उजारू नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारू सारी महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहे रहाओ नाम बसार चलह अनमार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत ना आवै गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की सरन समाहे गुर प्रसाद नानक जग दीत्यो बहुर ना आवह जाहे सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन पये खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीते आ बहुर ना जुए हार आठ पहर तब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारू महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावह गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्ण ताको काम जा कै हृदय वसै पै पंजन किस जाने सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगे दान सारी महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

पर वार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निध पाही। सारी महला पंजवा, निभहि नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निध तन, बिखै माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ,

मन मोहिहु अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंद पहै सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोबिंद बिन सेउ सब परमाद। डोरी लपट रही चरण संग भ्रम पै सगले खाद। एक आधार नानक।

जानो दुतिया भाव सब लूह रहाओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिख्या के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काढ़ी नरक ते तूहू संत प्रसाद मिलियो सुख दाता बिनसी हौ मैं हूह राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाव ईत ऊत ना डोल कतहू नाम हिरदय तार गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार जल थल महियल पूर रहो सर्वनाथ अपार हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांछै उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देखह कब आखी रहाओ तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी जह दुर्गंध तहां तू बैसह महा बिख्या मद चाखी रहाव कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी संतां बिनतै कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी जी जंत सगले तै मोहे बिन संतां किने ना लाखी नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी सारंग महला पंजवा मायरी काटी जम की फास हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास रहाओ कर कृपाली ने कर अपने उपजी दर्श प्यास संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस महाध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो सारंग महला पंजवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर रहाव प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस धन मोर त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर भयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्ब ला जोर नानक सरण कृपा निध सागर बिन से आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए जन्म मरण विकार अंकुर हर काट शा देखोए परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए रमण गुण गोपाल करते नानका सच जोए सारंग महला पंजवा हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राच है मिथन सब विस्थार रहाव साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हिरदय बहुर जन्म ना मार कर अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रहन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारंग महला पंजवा।
मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाए बिनसी सब अवमानी रहाओ तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवा त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साक तुम्हें संग

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बिकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारण महला पंजवा कर छेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द ते आए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारन महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संद सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपर

गए। संतन के चरण लाग नानक गुण गाई, सारंग महला पंजवां हर हरे हर मुख बोल, हर हरे मन तारे रहाओ, श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास सिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उन्मत अंध तंध रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की पास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह लाई सारंग महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग महकू रहन न पावे एक आवह एक जाही रहाओ कां को तन धन संपत कां की का स्यों नेहो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही।

अवमान सरल संतन गहो मुक्त हो हे सिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही। सारंग महला नौवां कहा नर अपनो जन्म गवावे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ। एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवा मन कर कबहू न हर गुण गायो दिखिया सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां महन

जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई। ऐसी रबत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई। विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई। हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई। बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई। प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई। जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पई मन पहाई। सहज समाध सदा निवहर सियो जीवा हर गुण गाई। गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

ऐसी गुरमत पाई सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड भागी अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला मन रतना अमृते नेह केवल आद जुगाद दयाला मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पहु पंजन अवर न जानिया दूजा मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदकाई एक सबिन मैं अवर न जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथो कथिया कहो कहावे सोई नानक दीन दयाल हमारे अवर ना जानिया कोई सारंग महला तीजा अष्टपदियां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई हर बिन अवर ना जाना कोई हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाओ शब्द पौ भंजन जम काल निखंजन हर सेती लिवलाई हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहे आसमाई भगता का भोजन हर नाम निरंजन पहनन भगत बढ़ाई निज कर वासा सदा हर सेवन हर दार शोभा पाई मनमुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथै कहानी गुरमत निश्चल हर मन वसिया अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई सतगुर मिल रही है सद अपने जिन हर से ती लिवलाई मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई हर सर सागर सदा जल निर्मल नावे सहज सुपाई शब्द विचार सदा रंग राती हम मैं तृष्णा मारी अंतर नेह केवल हर रविया सब आत्म राम मरारी सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पाणी दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी आपे मेल लय अकथ कथिया सच शब्द सच बाणी नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवर ना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांत आई पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके ब्रह्म भेख थके भेख तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राती साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाईए जिन विचों आप गुआया
साचा शब्द सहज तुन उपजै, मन साचा लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जगतो वरतै विरला एक पछाण है, शब्द मरे ता सब किश सूजै अन दिन एको जान। जिसनो नदर करे सोई जन बूजै, होर कहना कथन ना जाई। नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिव लाई सारंग महला तीजा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर लै जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कै शब्द पछानिया, बहु विध कर्म करह पाए दूजे बिन शब्द बौरानिया। हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब जग है मैला दूजे परम पत खोई। क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ ना पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो नामो हुए सखाई। सच्चा सच दाता कर्म विधाता, जिस भावै तिस नाए लाए। गुरु द्वारे सोई बूझे जिस

जय पाए मोख द्वारा जिन दर सूजै से कदे ना बगाड़े सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावे आवन जान रहाई से दर साचै साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवे आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए हैं जिन

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो।

काष्ठ संगे नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बढ़ाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुढ़ाई मुक्त भये साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भये कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बद साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन सीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुख वेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का कश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भये निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थिरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माणे भोग कटाणे आन ना दिया कोथिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देओ कमन बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिल कर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिसे संग ना कछु हूं जाई कहो नानक हर हर अराध हो कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा
हियो अरापौ देहु संदेशा प्रभ जीओ कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चिरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुवाया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सह जाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते हो धूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरै पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया सलोक महला दूजा आप उपाय नानका आपे रखै वेक मंदा किसनो आखिया जा सबना साहिब एक सबना साहिब एक है देखै धंदै लाई किसै थोड़ा किसै अगला खाली कोई नाही आवह नंगे जाहि नंगे विचे करह बथार नानक हुक्म ना जानिया अगे काई कार महला पहला जिन सथाप जिया को भेजे जिन सथाप ले जावे आपे थाप उथापे।

आए तले आवह नानका सदे उठी जाहे महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोतेदार कुंजी जिन को दितिया।

नाम निरंजन निर्मला सुनिए सुख होई, सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई, बहंदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई। भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई, नानक मन पन रव रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला, नानक तुलिया है।

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापै रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने ओखा नानका आख ना जापै आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशा ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वडे आई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नहाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

की गिरही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपे मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोई दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्गी मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कड़ी है पशु परिया जाए अगे लेख है मंगे है होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुने घट चानना अनेर गुआवे नाए सुने आप बुझी है लाहा ना पावे नाए सुने पाप कटी है निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीवान पौड़ी नाए मने है सुख उपजे नामे गत होई नाए मने है पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने है पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने है पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले है नाओ मनी है जिन दे वै सोई। श्लोक महला पहला। पुरिया खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिकै किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

थाकिया एवड रखह जोत, नानक चस्यो चुख बिंद उपर आखण दोष पौड़ी। नाए मन्ने कुल उधर सब कटंब सबाया, नाए मन्ने संगत उधर जिन हृदय वसाया। नाए मन्ने सुन उधरे जिन रसन रसाया, नाए मन्ने दुख भुख गई जिन नाम चित लाया। नानक नाम तिन्नी सलाहया जिन गुरु मलाया। सलोक महला पहला, सबे राती सब देह सब थिती सब वार, सबे रुती महा सब सब धरती सब भार, सबे पानी पौन सब सब अग्नि पाताल, सबे पुरिया खंड सब सब लो लो आकार। हुक्म ना जापी केतड़ा कह ना सकी जयकार, आख है थक है आख आख कर सिकती विचार। तृण ना पायो बपुड़ी नानक कह गवार।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरतै आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी अराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन को जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजिक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया।

आया नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलूक महला तीजा। पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवे अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवे ता पारखियां थावो लयो परखाए। जे उस नाल चित लाए ता वत लह नौ नित पल्ले पाए। घर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा। मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मनमुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्हां दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे। पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेखै विकसै मोह माया। देश परदेश धन चराए आन मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा। गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा। जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पड़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए। पौड़ी स्त्री पुरख है अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग को कढ़ो उपाया। गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया। नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा। माया मोहे वसारिया गुर का भउ हेत अपार। लोभ लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार। नानक आपे मेल लए आपे बख्शन हार। महला चौथा। नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद। किस स्यो क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। महला चौथा। सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याए। दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीह गुठा शहबर लाए। सब धरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावै कृपा कर हर आपे पावै थाए। हर तसै त्यावो संत जन हो जो अंते लए छडाए। हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादिया तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृपतै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया। तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया। हिरदै कवल परगास उन मन लिवलाइया। जे को करे उस दी रीस

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

गऊ बास कौ संत्या खीर गला बांध दोहे ले अहीर माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे अत संचय समझे नहीं मूड धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै।

पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाऊ मेरी बांदी भगत छिडावे।

अन पावनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाउ। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी। जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली। परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली। छाड़ मन हर बेमुखन को।

हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन झोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भिखे, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज न कछुऐ, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

दी। हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब पन का रहाउ, आगे कौ किस तुलहा बंद हो, क्या परवासा धन का, कहां बसासा इस भांडे का, इतनक लागै ठन का, सगल धर्म पुन फल पाव हो, तूर बांचो हो सब जन का, कह कबीर।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साध न जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तौ धन साच सिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम अधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पा।

पीतर अमृत सोई जन पावै, जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाव। दुख सुख दो सम कर जान, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनो नदर करे करतार। काया महल मंदर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाई, हर मेले मेलन हार। मलार

तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट महसास सास गए काया ढल पाए ताके पाछे कोई ना खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंस दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सात्य नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथ दान नित नित लेहो ना सीजै दे अंत

निदान से तनवंत जिस कर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला

काल खंभ हाथ तृष्णा उडण की डांज नदर करे ता बंदा तीर ज्यों बखाले त्यों वेखा वीर ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ पौने पानी अग्नि कासन बंद नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला।

ब्रह्मा बिचन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आ विचार।

बुद्ध बदा तैसा एहु संसारा जिस ते हुआ तिसे समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हम मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाव त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हम मैं कर्म कमाए साहिब भावे सोथी है पय किरत फराए सतगुर भेटे मन मर रह हर नाम वसे मन आए तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाए चौथे पद वासा होया सच्चे रह समाए मेरा हर प्रभ अगमे अगोचर है कीमत कहन ना जाए गुर प्रसादी बुझी है शब्दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिले शांति उपजै अन दिन नाम लए मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुरख।

परम पद पाया वड्डी वड्याई होई आन दिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई मन रे गुरमुख हृदय विचार तज कूड़ कटंब हउमै बिख तृष्णा चलन।

आनंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम समवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख ना जाई लखिया गुरमुख अकत कहान आपे दया करे सुखदाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों आप गवाया।

अंतर वसिया अलाखी अपीवा गुरमुख हुए लखाई। नानक जिस भावै तिसे आपी दीवै भावै तिवें चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै अन दिन लागै सद हर स्यो ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खिलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवे। जा आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवे। इस मन की बिद मन हूं जाने बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे समाई। एक बिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता। गुर कै शब्द हर त्याई रहाउ मन तन भीजै एक लिव लागै सहजे रहे समाई। गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै एक नाम लिवलाई।

हे गुरमत बुद्ध पाई मन तन प्राण धरी तिसे आगै नानक आप गवाई मलार महला तीजा मेरा प्रभ साचा दुख निवारण शब्दे पाया जाई भगती राते सद बैरागी दर साचै पत पाई मन रे मन स्यों रहो समाई गुरमुख राम नाम मन भीजै हर सेती लिव लाई रहाउ मेरा प्रभ अति अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई सच संयम करनी हर कीरत हर सेती लिव लाई आपे शब्द सच साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मलाई देही काकी पौन बजाए गुरमुख अमृत पाई आपे साजे सब कारै लाए सो सच रहिया समाई नानक नाम बिना कोई किश नाही नामे दे वडाई मलार महला तीजा हम मैं बिख मन मोहया लद्या अजगर पहारी गरड़ो शब्द मुख पाया हम मैं बिख हर मारी मन रे हम मैं मोह दुख भारी एहो भवजल जगत न जाई तरना गुरमुख तार हर तारी रहाऊ त्रै गुण माया मोह पसारा सब वरतै आकारी तुरिया गुण सत संगत पाई नदरी पार उतारी चंदन गंध सुगंध है बहु बासना बहकार हर जन करनी उत्तम है हर कीरत जग विस्थार कृपा कृपा कर ठाकुर मेरे हर हर हर उरतार नान

भार रहाव माया ममता कर पैलाई एहो हुक्म कार श्रेष्ठ उपाई गुर परछादी बूझो पाई सदा रहो हर की शरणाई सो पंडित जो त्यहां गुणा की पांड उतारे अनदिन एको नाम वखाणे सतगुर की ओहो दीखिया ले सतगुर आगे शीस तरे सदा अलग रह निर्भ

नानक कवन बिद करे क्या कोए, सोई मुकत जाको कृपा होए। अन दिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए। मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई, जम काल मारे नित पत गुआई। सतगुर सेवा जम की कान चुकाई, हर प्रभ मिलिया महल घर पाई। प्राणी गुरमुख नाम त्याए, जन्म पदार्थ दुखदा खोया। कौडी बदलै जाए रहाउ, कर कृपा गुरमुख लगे प्यार। अंतर भगत हर हर उरतार, भवजल शब्द लंघावन हार। दर साचै दिसै सचियार, बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया। बिन गुर परम भूले बहु माया, हम मैं ममता बहु मोह बधाया। दूजै पाए मनमुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा। गुर शब्दी जपिए सच लाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा। नानक गुरमुख नाम समाहा, मलार महला तीजा। जीवन मुक्त गुरमति लागे, हर की भगत अन दिन सद जागे।

मिले सजाई गुरमुख राम नाम लिवलाई कूड़ै लालच ना लपटाई जो किछ होवै सहज सुभाई।

बंधन तोड़े मुक्त घर रह, गुर शब्दी अस्थिर घर बह, मेरे मन काहे रोस करीजै, लाहा कलयुग राम नाम है, गुरमत अन दिन हृदय रवीजै, रहाऊ बाबीहा खिन खिन बिल लाए, बिन फिर देखे नींद ना पाए, इहो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सुपहाए, नामहीन बिन सह दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख ना जाए, बिन भागा नाम ना

गोदावरी सरस्वती ते करह उदम धूर साधु की ताई। किल विख मैल भरे परे हमरै विच, हमरी मैल साधु की धूर गवाई। तीर्थ अठ सठ मजन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी। सब दुरमत मैल गवाई रहाओ, जाहर नवी तपै भगीरथ आनी। केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ। मिल हर जन सोभा पाई, जितने तीर्थ देवी थापे। सब तितने लोचे हैं धूर साधु की ताई। हर का संत मे

नानक ललाट होवै जिस लिखिया तिस साधु धूर दे हर पार लंघाई। मलार महला चौथा तिस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे तिस की भूख दुख सब उतरे। जो हर गुण हर उच्चरे जप मन हर हर हर निस्तरे। गुर के बचन करन सुन त्यावै भव सागर पार परे रहाऊ। तिस जन के हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करे। हर जन को मिलिया सुख पाईऐ सब दुर्मत मैल हरे। हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्तै जा हर गुण विचरे। हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे। जिन एह प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन धरे। जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख तरे। मलार महला चौथा जितने जी जंत प्रभ कीने तितने सिर कार लखावे। हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कारे लावे। सतगुर हर हर नाम जरडावे हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई। हर भौजल जगत तरावे रहाउ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे हर प्रभ पावे। हर की सेवा सतगुर पूजो हो कर कृपा आप तरावे। परम भूले अज्ञानी अंधले भ्रम भ्रम फूल तरावे। निर्जियो पूजे है मड़ा सरीव है सब बिरथी काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कही है हर हर कथा सुनावे। तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विद सतकर मुख संचो। तिस पुन की फिर टोट न आवे सतगुर देव प्रतख हर मूरत। जो अमृत बचन सुनावे नानक भाग भले तिस जन के जो हर चरनी चित लावे। मलार महला चौथा जिनकै हियरै बस्यो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत। तिन देखे मेरा मन बिगसै हौं तिनकै सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी। जो गुरमत राम रस खांत रहाउ हर के दास साध सखा जन। जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ै।

हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलोह करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम त्यावह सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे श्रेष्ठ सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभु कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मन मुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछता।

खीर आधार बारिक जब होता, बिन खीरे रहन ना जाई, सार संभाल माता मुख नीरे, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभ दाता, भूलह बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जह जाता रहाउ। चंचल मत बारक बपुरे की, सर्प अग्न कर मेले, मात पिता कंठ लाए राखे, आनंद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निधान ग्रह तेरे, मन बांचे सो लैसी। पिता कृपाल आ गया एह कीनी, बारक मुख मांग।

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूजह, आत्म घाटी हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना डार हो प्रभ करते, राग

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी।

प्यारी प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवां अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौत भयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरियो संसार कठन भय।

आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब बूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरण आया मलार महला पंजवां।

कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप

अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मध्ये को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग न जानू मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिर आनू कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानू मलार महला पंजवा दुष्ट मोए बिख खाई री माई जिसके जीत नहीं रख लीने मेरे प्रभ को कृपा आई रहाउ अंतर जामी सब मह वरतै ता भउ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथा नाथ दीन दुख भंजन

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है गुर उपदेश हर हृदय वस्यू सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाऊ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करू इशनान साची दरगाह पाई मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जा को कर्म लिखिया तुर आई।

पाई। मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई, कर कृपा प्रब आप मलाई, अपने सेवक को लय प्रभ लाई, ताकी कीमत कही ना जाई।

तुद पानी नानक तिन कै सद कुरबाणी मलार महला पंजवां परमेश्वर होआ दयाल मेघ वरसै अमृत धार सगले जी जंत त्रिपतासी कारज आए पूरे रास्ते सदा सदा मन नाम संभाल गुरपुरे की सेवा पाया एथे उथे निबह नाल रहाउ दुख पन्ना पै भंजन हार।

राखे सब जनत गुण गावहु नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जानह प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवां गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाए साध संग सद हर गुण गाए मन मेरे गुर पूरा सलाहे नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाए रहाओ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए।

मन अपाव सगर किए, नह दुख सा कहलाहे। पज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रिय की सोब सहावनी निकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी। रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत, बहु विध रूप दिखावनी निकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर, घट घट लालन शामनी निकी। साध संग रामैया रस पायो।

रहाउ। दर्श सफलियो दर्श पेखियो, गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारी, विषम विषम विषम भई, अग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही एक तू ही, भगत टेक तुहारी, जन नानक शरण द्वारी, मलार महला पंजवां, बरस सरस आ गया, होहे आनंद सगल भाग रहाउ। संत संगे मन परफड़ै, मिल मेघ धर सुहाग, कन घोर प्रीत मोर, चित चातरक बूंद ओर, ऐसो हर संगे मन मोह, त्याग माया तोह, मिल संत ना

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श

रचनी इथिया गुरमत जारी मन तन हेम भय सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचे तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत राखो साच मिले गोपाला बांधी तंद अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछूं गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहाई

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन शिंगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कै तकिया सा चैतान नाम संभाल सरूड़ी बाण थै पावै दर लहस प्राण ऊडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना ऊंची तार निज कर वासा तह मग ना चालन हार जित कर वसै है तू है बिद जान है बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दबिया छापै करन पलाव कर बिललातो बिन गुर नाम ना जापै पल पंकज मह नाम छडाई जे गुर शब्द सिंहापै एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर एक सतगुर।

अचार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई। धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई। लाहा हर सत संगत पाई, करमी पल्लै पाई। सतगुर विण किन ना पाया, मन वेखो हृदय विचार। वड भागी गुर पाया, भव जले उतरे पार। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार। मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाय। नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर भाणा पाए। मल्हार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा। त्रै गुण करे बीचार, बिन नावे जम डांड सह। मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे।

हर हर नाम त्याई रहाउ, हरे अपने भाणे सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

निज कर होवै वास, जम काल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनास। हर नावै नु सब को प्रताप दा, विण भागा पाया ना जाए। नजर करे गुर भेटिया, हर नाम वसै मन आए। नानक नामे ही पत उपजै, हर स्यों रहा समाए। मलार महला तीजा, अष्टपदी घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए। दुख पल्लर हर नाम।

कमल परगास, तित काट नामै नाम निवास, हऊ मैं भगत करे सब कोई, ना मन पीजै ना सुख होए, कह कह कहण आप जनाई, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुर मन पाए, अन दिन नाम रहे लिवलाए, सद ही नाम वेखह हजूर, गुर कै शब्द रहया भरपूर, आपे बख्शे दे प्यार, हम मैं रूप

बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा मालदे की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला तीजा, गुर मिले है मन रहसी है, जो उठे परम शिंगार, सब दिसे हरियावली सर भरे सुभर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजीठे लाल, कमल विगसे सच मन गुर कै शब्द निहाल, मनमुख दूजी तरफ है वेखो नदर निहाल, थाही पाथे मिर्ग ज्यो सिर दिसे जम काल, खुदिया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल, इनी अखी नदर ना आवई जिचर शब्द ना करे विचार, तुद भावै संतोख।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुरबाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी

हो नानक चूर मरह दुहागनी जिन अवरी लागा ने हो महला दूजा सावने आया है सखी जल हर पर सुनहार नानक सुख समन सोहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख बिन कलम मसवाणिए सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाण चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघै हक किश नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसार नहार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार।

ऐसे पुत्र भंडार उथे हाथ ना अपड़े कूक ना सुनिए पुकार उथे सतगुर बेली होवे कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा, कलमल होई।

हन तन उपजै बहु घणा कीमत कहण ना जाय। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देनदार जित संबाहे। जित खादै सुख उपजै फिर दुख ना लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाए। दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिलिया जाए। आपे जोड़ विछोड़िया।

जो हर चरनी रहे लिवलाय। ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बनत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाई। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाई। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो गई।

आई। नानक तिनका आख्याप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उरतार। हर अमृत पीवे है सदा रंग राते हमें तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसै कृपा तार। नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मरार। पौड़ी अतुल क्यों तोली है बिन तोले पाया ना जाए। गुर कै शब्द विचारी है गुण मह रह समाए। अपना आप आप तोल सी आपे मिले मलाई। तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाए। हों बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाए। जगत मुस्से अमृत लुटी है मनमुख बूझ ना पाए। बिन नावे नाल ना चल सी जासी जन्म गवाए। गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किसना वसाए। सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए। एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्ने ते खोतरै चढ़ै चवगल वन।

धनी तू सब किसे आपे आप दूजे किस जानी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाय।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

पौड़ी आपे जगत अपाय कै गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर धारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार सलोक महला पंजवा रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरै नाउ राती दिन सुसुहेलिया नानक हर गुण गाउ महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चै दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आई जे सतगुर अगै घालिया ओहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख विण नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया।

सच समाया। सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सुहागणी गुर कहित अपार। महला तीजा सावन दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक फिर की सार ना जानी सब शिंगार खुआर। पौड़ी सच्चा अलख अपेरो हठ ना पतीजै एक गावे है राग परियां राग ना पीजै एक नच नच पूरे है ताल भगत ना कीजै एक अन ना खाहे मूरख तिना क्या कीजै तृष्णा होई बहुत किवै ना तीजै कर्म बदै कैलो खप मरी जय लाहा नाम संसार अमृत पी जय हर भगती असनेह गुरमुख की जय। सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याई पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाहि नानक हुक्म ना जापई किथे जाहि समाहि फसल आहारी।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसमे भावे ओहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सकता।

भूख सुनावै खसमै मूल ना भावै अक स्यो प्रीत करे अक तिद्दा अक डाली बह खाई खसमै भावै ओहो चंगा जे करे खुदाई खुदाई नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

0: लाई है।
1: अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई, विण सतगुर ना लगे प्यार। तू प्रभ सब तुद सेव दे, एक ढाडी करे पुकार। देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार। श्लोक महला पहला, राती काल घट है दिन काल। सिज्जै काया हुए पराल, वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल। भुलिया चुक गया तपताल, अंधा चख चख पया चेर। पिछै रो वह लिया वह फेर, बिन बूझे किस

औरली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत।

जिस भाणा मन वसाई अपना भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिखिया कदे ही रज्जै नाही मूरख भुख न जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर गुरु।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाऊ नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाउ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाउ फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाऊ सो पढ़िया।

नानक आप अकथ अकथ की कथा सुने, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख होए। महला पहला।

प्राण पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम विसार तावन तत्या।

गुड़ बैस नक पकड़ है राती मानस खाने फड़ कर लोकां नू दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे सियों क्या कही है कह ना कहया बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख है जान इस मेला उते मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मास होए जीए लया वसेरा अपाख पक है पाख तज छोड़ है अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे मास प्राणी मास कतेबी चौहो जुग मास कमाना जज काज व्याह सहावे उथे मास समाना स्त्री पुरख निपजह मासो पात चाह सुल्ताना जे ओए दिस है नरक जांदे तां उनका दान ना लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे देखो इहो तिंगाना।

खाम पूजै हिकमत खुदाया मन तवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलाखे गोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सचिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

जांचै पसमति सुऐ सारा जा त्रिपवन पति जांचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै कड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिपवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंतर।

तास पत तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्तरयो आन रे आन भरपूर सो रहाओ जाके भागवत लिखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अश

आस रहाउ। हम हर हृदय जपियो नाम नर हर, प्रभु कृपा करी कृपास। अन दिन आनंद भया मन बिगसिया, उदम भय मिलन की आस। हम हर स्वामी प्रीत लगाई, जितने सास लिए हम ग्रास। किल बिख दहन भय खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है, मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास। अवगने आरे पाथर पहारे, सत संगत मिल तरे तरास। जेती सृष्ट करी जगदीशर, ते सब ऊच हम नीच बिख्यास। हमरे अवगुण संग गुर मेटे, जन नानक मेल लिए प्रभ पास। कानड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक। हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ। नाना रूप रंग हर केरे, घट घट राम रवियो गुपलाक। हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिख्या के ताक। संत जना की बहुत बहु शोभा, जिन उर तारियो हर रस कर साक। हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक। हर के संत जना मह हर हर, ते जने उत्तम जनक जनाक। तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुश्की मुश्काक। तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक। जन नानक के सखा हर पाई, मात पिता बंदप हर साक।

वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाउ। मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमया लुभदो पुत्र कलत्र मोह प्रीत। जैसे तरवर की तुष छाया किन मैं

परचै राम रविया घट अंतर, अस फिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह ना उतरै कबहू, हर हर जाय मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नाम

तेहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ।

भाग हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत हों बल बले हों बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी कीचै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस रहाओ हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे।

पग चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइया हर ब्रह्म जोग हर पाइया सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगाधो मत गुरमत हर प्रभ लादो तुर हो लिखे ललादो रहाओ भिख माया संच बहु चित बेकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भय कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति

कुल सगल तरादू कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप नहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निध दुख बदारन सुख दाते सतगुर जां को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधारै वोट पराधी खिन महतारै जां को चीत आवै गुर अपना तां को दुख नहीं तिल सुपना जां को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर

सन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब भई।

तैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों।

भौजल करना अपैदान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सत गुरु दरडाया रहा नह त्रिपतानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगले आस होत पूरन कोट जन्म दुख जा

मंगल कसमला मिट जाहे परेरे संत चरण धरो माथे चांद ना ग्रह हुए अंधेरे संत प्रसाद कमल बिगसे गो

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक का।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली ताकि गंठ नहीं छोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए। काटे अज्ञान भरम मोह माया, लियो कंठ लगाए। कानड़ा महला पंजवा आन डरा।

उत्तर करेर अठसठ मज्जन मैल कटेर सास सास त्याह मुख नहीं मोर किस संग ना चाले लाख करोर प्रभ जी को नाम।

एक टुलेरे दर्शन प्यास बहुत मन मेरे मिल नानक देव जगत गुर केरे कानला महला पंजवा ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ आस प्यास सफल मूरत उमंग ही ओ तरसना।

कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजाचार करत में लंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठ नग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनू।

करो, ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीर्त करह तुहारी,

जाय पतत पावन बिरद स्वामी उदर ते हर त्याई रहाव संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख लेहो गोबिंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारो अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाहि इनस्यों तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बेहात।

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवा कर दसवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ, दूत संग निवार, रहाओ, कोट जन्म जोन प्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई, मिलेओ नाम आधार, दलाभ जन्म सफल नानक, पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुभाए अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण ननान प्रगट्यो एह चोले, चरण नभाए आनत जाए, थान थनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले, कानड़ा महला पंजवा, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोच।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

आया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर कलावै गो पाप बकार मनूर सब भारी दिख दुत्तर तरयो ना जावै गो भौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावै गो राम नाम हर भेटी है हर रामै नाम समावै गो अज्ञान लाए सवालिया

हर हर नाम तुरावे गु जो जो जपै सोई गत पावे ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावे गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावे गु कर कृपा सतगुरु मलाव हो मिल सतगुरु नाम त्यावे गु जन्म जन्म की हम मल लागी मिल संगत मल लह जावे गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावे गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवे गु बिन संगत कर्म करे अभिमानी खड पानी कीकड़ पावे गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावे गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावे गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावे गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावे गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गु जो जो भगत होए

जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दरड़ावे गु रहाउ चल तो चल चल दह दह दिस गुर राखे हर लिव लावे गु सतगुर शब्द देर दे अंतर मुख अमृत नाम चुआवे गु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावे गु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवे बिख चार चार लिव लावे गु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावे गु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावे गु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावे गु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावे गु सुपनंतर संसार सब बाजी।

सतगुर सरण त्यावै गु लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को होए आवै गुरहाऊ सतगुर महापुरख है पारस।

सतगुर बचन बचन है नीको, गुरबचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर सरन सरन मन पाई, सुधा सुधा कर त्यावै गो। दयाल दीन भए है सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावै गो। सतगुर सरन पए से थापे, तिन राखन को प्रभ आवै गो। जे को सर संदै जन ऊपर, फिर उल्टो तिसै लगावै गो। हर हर हर हर हर सर सेवह, तिन दरगाह मान दवावै गो। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावै।

साकत नार सतगुर नहीं पिया, ते बेमुख हर परमावै गो। लोभ लहर सुवान की संगत, बिख माया क्रंग लगावै गो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावै गो। नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख।

आए, जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइए हर त्याइए, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांचह, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइय नित त्याइय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बांध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

फल फलना सलूक महला चौथा हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावे मान जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दीन लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हों मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आई सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बहु बहु विद भांत उपावनी सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमति तुदै नावनी जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो जित दालत दुख भुख सब लह जावनी सलोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उरतार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार मन हर हर नाम त्याया विख हो मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम ना चेतियो तिन जूए जन्म सब हार गुर टुठे हर चेताया हर नामा हर उरतार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार वड भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार बिन नावे जे कर्म कमावने नित हों मैं होए खुआर जल हस्ती माल नवाली है सिर पी फिर पावे शार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुना।

आपे वरतै सब जगत किया बनजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्याव है तुद सफल से गाव है गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सत गुर कै पग पाह सत संगत हर मेल

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्याव है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर यज्ञ में आगो चर यज्ञ में हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिथिया पाए ना सब सिष्ट उपाय।

जगदीशर करते अपरंपर पुरख अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सतगुर पूरा बोल। सब त्यागो हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर निव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत भरात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर रव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जपो हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा, सब जी तुम्हारे। सब तुदै नो आराध दे, दान दे प्यारे। हर दाता दातार हाथ कढ़िया, मीह उठा संसारी। अनजमिया खेती भाव कर, हर नाम सम्हारे। जन नानक मंगै दान प्रभ, हर नाम अधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपी है सुख सागर। हर के चरण आराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उधार होए, हाटै जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर। सब पवो हो शरण सतगुरु की, बिनसै दुख दागर। श्लोक महला चौथा, हौ टुंडेंदी सज्जना, सज्जन मैंढै नाल। जन नानक अलख ना लखिया, गुरमुख दे दिखाल। महला चौथा, नानक प्रीत लाई तिन सच्चै, तिस बिन रहन ना जाई।

सुनावे जन्म जन्म की मल उत्तरे मन चिंदिया पावे आवन जाना मेटिए हर के गुण गावे आप तरह संगी तराही सब कटम तरावे जन नानक तिस बलिहार।

तारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत कर है तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहु पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाऊ गुर के पग सिमरों दिन राती मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां पया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरुपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाऊ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचे हैं प्रभ दिखंथे तुम बड़ दाते जी जीन के तुम जानो हो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का कहो तिन कहो क्या दिन थे सब तन मन अर्पो अर्प अरापो कोई मिले प्रभ मिल थे हर के गुण बहुत बहुत बहुत सुबा हम तुष कर कर बरम थे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ समरथे कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावे हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगे तह छूटे नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हों मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नावाई सब किल विख पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंति अवसर आए बनत है तह राख नाम साथी जन तेरा जस गाव है हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुड

यहाँ की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुग्ध ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहि दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावह भगत तिना हर पावेंगे ज्योति ज्योत मलाए ज्योत रल जावेंगे हर आपे होए कृपाल आप लिव लावेंगे जन नानक सरन द्वार हर लाज रखावेंगे छका एक कल्याण पोपाली महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिद तरन हर चिंतामणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम त्याया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरन जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक।

दर्श रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा।

ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया।

दुर्गा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाइए साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख बनासना।

मन तन जापिए भगवान गुरपूरे सो प्रसन्न भई सदा सुख कल्याण रहाउ सर्ब कार्य सिद्ध भई गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरिया करूं दिन रहन सेव नानक।

परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ। हर बिन आन न कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन तान। सर्ब कटा के दाते स्वामी, देहे सो पहरन खान। सुरत मत चतराई।

जुगत अलक सुख हर भगत लवै ना लाम नु प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धाम नु कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर।

लाल लाल है रंगन, मन रंगन कौ गुर दीजै। राम राम राम रंग राते, रस रसक घटक नित पीजै। वसुधा सप्त दीप है सागर, कड कंचन काड तरीजै। मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है, हर मांग है हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए तावह प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुर पारस परस करीजै। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सत गुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है, नित आसा आस करीजै। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगीजै। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, ज्यों मरगाई पंक ना पीजै। चंदन वास पुयंगम वेड़ी, किव मिलिए चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहु कीनी, पल बै संतर पसम करीजै। महा उगर पाप साकत लर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जननी के, जिन अंतर नाम तरीजै। परस न परस भय साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। साकत सूत बहु गुर जी भरिया, क्यों कर तान तनीजै। तंत सूत किस निकसै नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जवे हर मानक, गुर किरपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हूँ जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सेवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

भवन पवे तहोए सब जह साधु चरण तरी जय तज लाज अहंकार सब तजी है मिल साधु संग रही जय धर्म राय की कान चुकावे बिख डुबदा काड कड़ी जय परम सूके बहु उब सुख कही है मिल साधु संग हरी जय ताते बिलम पल ढिल ना की जय जाए साधु चरण लगी जय राम नाम कीर्तन रत्न वथ हर साधु पास रखी जय जो बचन गुर सत सत कर मान तिस आगे काज तरी जय संतो सुनो सुनो जन पाई गुर काढ़ी बाह को की जय जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ हो ता सतगुर शरण पवीजै जे वड भाग होए अतनीका ता गुरमत नाम दृढ़ीजै सब माया मोह बिखम जग तरीय सहजे हर रस पीजै माया माया के जो अधकाई विच माया पचै पचीजै अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार भार लग

तेरा गहना मातमक सूद नाए तेरा नाव मन्ने सब कोए विण नावै पत कबहु ना होए।

खुवार प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरिय साचा होई।

कल्पना होई प्रभाती महला पहला जा कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरे नाम

काल पंच तस्कर तावत राखी चूका मन अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीर्ज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिप

कर मानिया, नानक गिरी उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हौ तिस कै बल जाई। पाप पुन की सार ना जाने, भूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी कहो ना देखिया जाए खोटो पूठो।

जात जन्म नह पूछी सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

जाने, जिसनो नजर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो उजल सच सोए, उत्तम आख ना उच्चा होए, मनमुख खूल महा बिख खाए।

है कहावे सूई प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पेंद घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाऊ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादी मारी है छूटस साच नाय जिव आया तिव जाय सी किया लिख ले जाय मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाय जग खोटो सच निर्मलो

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जन को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

सच पाए प्रभाती महला तीजा जो तेरी सरनाई हर जियो तिन तू राखन जोग।

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु जब लग जी परान गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाऊ मूल पछाणन तिन निज कर वासा।

हुई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करी ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी।

अमर दे अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोल है सब रैन संभाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग चार है हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोहे फाथे माया जाल। खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुब दे काढ़ ले हो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीक। गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक। जिन हर हृदय नाम ना वस्यो तिन सब कारज फीक। जैसे शिंगार करे देह मनुख नाम बिना नकटे नक कीक। घट घट रमैया रमत राम राय सब वरतै सब महीक। जन नानक को हर कृपा तारी गुर बचन त्यायो करी मीक। प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी मुखार हर नाम हम कहे। पतत पावन हर नाम त्यायो सब किल विख पाप नहे। जप मान राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बस्यो। मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो। कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयानी ते साकत मूड मोहे। ज्यो मृग नाभ बसे बास बसना भ्रम भ्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाद बोध प्रभ मत देव हो हर प्रभ लहे। जन नानक को गुर हाथ सिर धरियो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर। हर जप्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने ही अरे। हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा। हर हर दान दियो गुरपूरे हर नामा मन तन बस पा रहाओ। काया नगर वसेओ घर मंदर जप सोभा गुरमुख कृपफा। हलत पलत जन भये सोहेले मुख उजल गुरमुख तरफा। अनुपव हर हर हर लिव लागी हर उर तारियो गुर निमुख पा। कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पल फा। तुमरे जान तुम ही ते जाने प्रभ जान्यो जन ते मुख पा। हर हर आप धरियो हर जन मह जन नानक हर प्रभ एक फा।
प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दरड़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप भा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुब दे बाहां दे कड बहा जप मन राम नाम अरधंबा उपजंप पाए ना पाइए कतहु गुर पूरै हर प्रभ लाभा रहाउ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस भा लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हर भा हों मैं बिखिया नित लोभ लोभाने पोत कलात मोहे लुग भा तिन पग संतना सेवे कबहू ते मन मुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन भा ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी जन नानक दास तुमन भा शका एक प्रभाती बेपास पड़ताल महला चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम निदान हर दरगाह पावह मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठसठ मा जान सुन मन गुरमुख पावह मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवै पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत रच जोत निवाजिया सहजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना वसारहु सेव हो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गति हरख सोग ते रह निरारा ता तू पावह प्राण पते रहाउ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कटंब सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सो हर सेव हो नीता नीत तहां सखाई जह कोई ना होवे कोट अपराध एक खिन महत होवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जां कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभ के

सेवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव हो।

पल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुई तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान

होई। सदा सदा प्रभ जी कै संग, उत्तरी मैल नाम कै रंग। चरण कमल स्यों लागो प्यार, बिनसे काम क्रोध अहंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत।

गुरपूरा पाइय वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा कुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजवा।

संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण पई आस। सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुर नानक तूठे। प्रभाती महला।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के भरम। साध संगत हर मिलै।

लोभ मोह बिन सजाए हं ताप रहाउ आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहे पाप नानक बारक कछु ना जानै।

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

नानक खोज लहै जन कोई प्रभाती महला पहला माया मोहे सगल जग छाया कामन देख काम लुभाया सुत कंचन सिंह हेत बधाया सब किसे अपना एक राम पराया ऐसा जाप जपो जप माली दुख सुख पर हर भगत निराली रहाउ गुण निदान तेरा अंत ना पाया साच शब्द तुझ माहे समाया आवा गौण तुद आप रचाया सेई भगत जिन सच चित लाया ज्ञान ध्यान नरहर निर्वाणी बिन सतगुर भेटे।

मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

आदि दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद। हे ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई। बिन सतगुर मुक्त किने ना पाई आवह जाहे मरह मर जाई। एहो शरीर है त्रै।

मर जान, नानक नदरी नदर पछाण। प्रभाती महला पहला दखनी, गौतम तपा अहल्या स्त्री। तिस देख इंद्र लोभाया, सहस शरीर चिहन पग हुए। ता मन पछोताया, कोई जान न भूलै पहा।

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाना क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाना राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाना बोली भाई सुपाई जो किछ वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा छुटक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास। गुरमुख विरला चीना कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई। ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी। एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटे नाम संभाल। आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवे सोई। बिन गुर सूझी किसे ना होए, आपे करे करावे सोए। झगड़ चुकावे हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे। एहो मन

जस कर्म धर्म पथ पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तौ मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रव रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास जो पावे त्यो रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत शू

पाई। प्रभाती महला पहला एक तुर बख्श लये गुरपूरै सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस मनमुख दुख न जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल लये सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया किपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपे निर्मल गुर की बाणी। आपे सुरता सच विचारस आपे बूझै पद निर्वाणी। जल तरंग अग्नि पवन फुन त्रै मिल जगत उपाया। ऐसा बल छल तिनको दिया हुक्मी ठाक रहाया। ऐसे जन विरले जागे अंदर

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया, नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया।

टिक एक सकी सिर छाहा वद पुरख स्वामी रहाउ छल नागन स्यो मेरे टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराय अमृत नाम मन रहया अघाय लोभ मोह स्यों गई विखोट गुर कृपाल मोह कीनी छोट एह ठगवारी बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यों ठाट न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम मेव स्यों मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाए हम गुर राख लिए लिवलाय इन लोगन स्यों हम पये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहु तपावस प्रभ सरबाग प्रभ

चक्र बनाए, अंतर की माल कब ही ना जाए। इत संयम प्रभ किन ही ना पाया, भगौती मुद्रा मन मोहया माया। रहाउ पाप करह पंचा के बासरे, तीर्थ नाए कह सब उतरे। बहुर कमावह हुए नसंक, जमपुर बांध खरे कालंक। घूंगर बांध बजावह ताला, अंतर कपट फिरह बेताला। वर्मी मारी साप नामुआ, प्रभ सब किछ जान जिन तू किया। कुंवर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता। देश छोड़ परदेसह ताया, पंच चंडाल नाले ले आया। कान फराए हराए तू।

बनता छोड बद नदर पर नारी वेश ना पाईए महा दुखियारी बोले नाही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाईए जोनी अनते रहता दुख देही सहता हुक्म ना बूझे व्यापिया ममता बिन सतगुर किने ना पाई परम गति पूछो सगल वेद सिमरते मनमुख कर्म करे आ जाई ज्यों बालू कर ठोर ना ठाई जिसनो भये गोबिंद दयाला गुर का बचन।

वै भाग ता दर्शन पाईए आप तरै सब कुटुंब तराईए रहाउ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिक सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माहि समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया रहाउ चूका गौण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त।

आसोए, तिस बिन बीजो नाई कोए, बैर बरोध शेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम

साई प्रभ सो प्रसन्न भये गोपाल जन्म जन्म के मिटे बेताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ इशनान करीजा चरण कमल निमख हृदय तारी गोविंद जपत सब कार्य सारी उच्चे ते उच्चा प्रभ थान हर जन लावह सहज ध्यान दास दासन की बांछो तूर सर्व कला प्रीतम भरपूर।

माहे निदाना कहां उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना पूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाओ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

कहिए सोई। अलह अलख न जाई लखिया, गुर गुर दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन दीठा। प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे।

मन का भरम ना जाई रहा। पकर जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाडा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बानी।

आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ता की अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत ना जानिया सर्ब निरंतर राम रहया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बिखु बन बिखे बास ते सुख लागेला सर्बे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुकाया।

आपै जो किस किया सो आपै आपै प्रणवत नाम देओ एहो जियो चितवै सो लहै अमर हुए सद आखुल रहै प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तल काती ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा कल भगवत बंद चिरामंग क्रूर दिष्ट रता निस्बादं रहाउ नित प्रत इशनान शरीरं द्वे धोती कर्म मुख खीरं हृदय छुरी संध्यानी पर दर्भ हिरन की बानी सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत परवेशं पग नाचस चित अकर्मं हे लंपट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कारी उजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं जिने आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अभिनिया कहो बेणी गुरमुख त्यावै।

भज जन्म सिरात है कहों कहां बार बार समझत नह क्यों गुवार बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाव सगल भरम डार दे गोविंद।

चार कारण करते वस है जिन काल रखी तार जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रि शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

कर्ता पुरुख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेहं अचुत तनह किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुतह त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमन है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रावसस्यर नखियतर गगनं कटंत बसुदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुत प्रात हीतं।

साध जान नह बिलंब धर्म बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो प्रसन्न माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत शरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मं ता मरणं हर।

वर्तंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत् ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेता गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य वह स्वांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधनु ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ पस्मं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरं तरं तारन है निर्तनंग तन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वासदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं।

वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है, सिमरंत नानक हर हर हरि, अनित्य है रचना निर्मोहते, दानं परापूर्वेण पूजन्ते महीपते।

पीवतं संतना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बास नह सैना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवदह गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन

प्रभं जात कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते।

नानक सीतलं साध स्वजन है, मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है, दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है, उपदेशं सम मित्र सत्र है, भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं, आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है, नानक नाम साध स्वजन है, अजापो गंत कांड मूलं बसंते समीप केह रह, तत्रगते संसार है नानक सोग हर खंग व्यापते, छलं छिद्रं कोट बिघ्नं अपराधं किल बिखमलं, परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं, मृत्यु जन्म परमंत नरक है, अनक अपावंग ना सिद्ध्यति निर्मलं साध संग है।

रमण सील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह, दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है, दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है, अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है, पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभमय, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है, एकामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावन है, चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समान।

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग न रह दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रख्या करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांध नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं

अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त सत्रं दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्रयान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

पवित्र है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वच्छल अनाथ नाथी।

जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतपालं नह सिदंत जठर।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धिहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनं जथा विपरा अमरहीनं जथा

श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदयं अच्युत बजंत नानक बड़ भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियान खर है विखम स्थान मन मोह मदन महा असाध पंच तस्कर है हीत मोह भय भरम भ्रमण अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहं कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगले अहं रोग खंडन है।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः अचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंग ता मेरं सहकंग ता हरियं बूडंग ता तरियं ऊनंग ता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्म रतं संसार गहंते नर नानक निहपल है पर दर्भ हिरण बहु विघ्न करण उच्चरण सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म

प्रहार नह बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण है रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन है पत्थर पुरजीण चढ़ियं नह जड़ियं पेड़ संपता नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जोन बासुरो रैणी पावनी साध संगेन लभंतं बड भागन है हर नाम गुण रमणं नानक संसार

गोविंद रमन साध संग मह समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लभदिहंग बड भागन है हर लभदो मित्र सुमितो विदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत है हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार

नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपारन संतं नानक लब्द कर्मण है जात काथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण है तत लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बड़भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण है लब्धं साध संगेन नानक बड़भागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरण है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरन भरन संपूर्ण है।

कसों वरंगण है। रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूप पावती। उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया। मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा। हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है। हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया। सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है। हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सावड भागणे। तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे। हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया। हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया। आसा इती आस के आस पुराइया। सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया। हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया। दुत्त

वह सच तना सुपने ऊ भी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औख दे आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसर।

की दम के हो होती साठ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह पवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हिरत संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल।

चरण चितव मन माहि, नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहू जाहि। लख घाटी ऊंचो घनो, चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी, करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम, चंदर बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों, खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों, सूद ना सिमरत अंग, प्रगट भयो सब

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आ।

आई गुरु वो साकत बापरे जो हाथ हाथ बिकाई कबीर साकत ऐसा है जैसे

पावन च भोलन हार संतोह माखन खाया शास पिय संसार कबीर माया डोलनी पवन वह हे अवतार जिन बुलोया।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्भ ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर शतर तर ते फुन तरनी गाड कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख आवास आज

ज्यों कांचुरी पोयंग कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे प्राण जाहेंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो अपने घर लावे आग,

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाय पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाय कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

वीर थोड़ा जल माछुनी चीवर मेले ओ जाल ए तो गने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

फैसलों की कुकर भली साकत की बुरी माए ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए कबीर हर

और काया हांडी काठ की ना उह चढ़ बोहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ से दोहरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदम हाज लीजे।

फिर मैया कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पांचों लड़के मार

पति पकारे चेह चढ़ी। सुनो हो वीर मसान, लोग सब आया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संग

आए जिन हर का नाम ना चेतेओ बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह कहो उपदेश ते

ज्यों की भूसी खाऊं, हुन हार सो होए है साकत संग ना जाव। कबीर संगत साधकी दिन दिन दूना हेत, साकत कारी कांबरी धोए हुए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मडाए काए, जो किश किया सो मन किया मुंडा मुंड अजाए। कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए।

आई सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाई कबीर हर का सिमरन छाड के ओहो ही राख नार गद ही हुई कह अवतर पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ा।

आए जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजयो पूत कमाल,

पाछ पौना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांध्यो जे जेवरी ते मत बंधो कबीर, जय है आता लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो

रहूं हरख गुन गाय। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिसरे आए मिले परबात, जो नर बिसरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर, देवल देवल ताहड़ी

स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओ भरी

होएगा। जो सिर पर आवे काल, कबीर ऐसा जंतिक देखिया, जैसी धोई लाख, दिसै चंचल बहुगुना, मत ही

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परे ओकटा।

कबीर साकत ते सूकर भला राखे आछा गांव। ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाव। कबीर कौडी कौडी जोर कै

पुरा पूजह नारहन करोड़ कबीरा एक चंपो देखियो हीरा हाट बकाय बनजन हारे बाहरा कौडी बदल जाय कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां

मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाहया एक लागत ही भुए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंतर ना पुजे हर

परिबहीर एक अवघट घाटी राम की तेह चल रहे कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किस का लाज सी, जब

असंत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जानै नाही कोई कै जानै आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी।

के बिन मिले पलट भई सब खेहे। जह अनपौ तह भय नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बिचार कह संत।

सास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेक सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत।

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतक हार कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया।

ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परिया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद।

कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलया खुदाई। साई मुझसे लर परया तुझे किन फरमाई गाय। कबीर हज काबे।

ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا جت دیکھو تت تو کبیر بکا

आस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्व ली पावनी प्रगट होई आए कबीर टालह टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सह गाए धरती भार ना ब्यापई उनको लाहू लाए महला पंजवा कबीर चावल कारने तुख को मोहली लाए संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले राम ना लावो चीत।

साथ कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगन करे काहे की कुसलात हाथ दीप कुए परै।

शरीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाहिय जे सबना सार करे महला पंजवा कबीर राम ना चेतेउ फिरया लालच माहे।

बोला कबीर राम नाम जानियो नहीं पालियो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बम्ब कबीर आखी केरे माट के रे

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साद है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

लोहिन कर रहूं ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाही आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोहिन क्यों करो सब घट देखो पियो।

वामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारो बेदोह माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह ता को बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धनवरी।

किचर झत लंघाई है छप्पर टुटे मेह परिदा जंगल जंगल क्या पवे वण कंडा मोड़े वसी रब हाली है जंगल क्या टुंडे फरीदा इनी निकी जंगी है फल डूंगर पवे ओम अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थे ओम फरीदा राती वड़िया तुक तुक उठन पास एक तिना दा जीविया जिन्ना वडाणी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्ता आड़िया हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़ै दाख बजौरिया।

कंत सिंह अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो दोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे ढूई ना लह पेयह नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई धन।

कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मर्ग सपाणी चित धार साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दरवेसा नू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही परे।

वत कुवारी ना थीय कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदरे पया लोक बडारन जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

तैं पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण होहे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही। महला पंजवां फरीदा खालक खलक मह।

आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परौहणी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैन मिंदरावले तिन्ना मिलन को आओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग महला पंजवा। फरीदा भूम रंगावली

चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल सखण रह गई वासा आया तल गोरां से निमाणिया।

फरीदा हो बलिहारी तिन पंखिया जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास फरीदा रुत फिरी वण कंबिया पत झड़े झड़ पाहे चारे कुंडा ढूंढिया रहन कथाऊ नाही फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरे जिन्नी वेसी सौ मिले से ही वेस करे महला तीजा काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ जिन्ना वड्याईया धन जोबन आगाह खाली चले धनी सियो तिब्बे ज्यो मेहा फरीदा तिन्ना मुख डरावनी जिन्ना वसारियों नाऊ ऐते दुख कनेरिया अगे ठौर ना खां फरीदा पिछड़ रात ना जाग्यो जे बंदड़ो मोयो जे ता रब वसारिया ता रब ना विसरियो महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा वे मोहताज अल्लाह से तीरत्या इहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख एक कर दिल ते लाहे विकार अल्लाह पावे सो भला तां लभी दरबार महला पंजवा फरीदा दुनी बजाई वजदी तू पी वजह नाल सोई जियो ना वजदा जिस अल्लाह करदा सार महला पंजवा फरीदा दिल रता इस दुनी सियो दुनी ना कितै कम मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाईऐ पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहिब संधिया क्या चले तिस नाल एक जागन दे ना लहन एक ना सुतिया दे उठाल टूडें दिए सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाओ सुहागनी इन्ना चाक ना होर सबर मन कमान ए सबर का नीहणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन एवै जानेन होण नजी को खुदाई दे भेत ना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ कर है वध थी वह दरियाओ टुटना थी वह वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किन्ने चालिया दरवे सावी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुँह प्री मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हौ टुनेंदी सजना सजन मैंडे नाल नानक लख ना लखिया गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाऊ डुब मुवे बग बप्पड़े सिर तल उपर पाऊ मैं जानिया वड हंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बप्पड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण
कवण सो मणिया मंत कवण सो वेसो हौ करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर ता वसया भी कंत मत हुंदी होए आना तान हुंदे होए नताना अनहुंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा धनी हियाओ ना कही थाए मानक सब अमोल वे।

सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पार आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धार उपत परलो एक निमख तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहि नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखान हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थान मन धन तेरो प्राण एक सूत है जहान कवन उपमा देओ बड़े ते बडान जान कौन तेरो प्यो अलाखे अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार

हर अकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुम्ह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिय अमृत हर को नाम लैत मन सब

सर्व सुख तिन्हु पाए, हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए। कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक ते तीस कोर तेरे की।

जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्स मन चाऊ भगत इहो मन ठहरावे, बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगत सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपन।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दू कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख।

ज्ञान हे भगवंत कृपा करता रहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चल

रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत। माया रंग बरंग करत ब्रह्म, मोह कै कूप गुबार पर्यू है। एता गब आकाश ना मावत, बिस्ता अस्त क्रिम उदर पर्यो है। दह दिस ताए महाबिख्या को, पर तन शीन अज्ञान हरियो है। जोग नबीत जा रोग ग्रस्यो, जम दूतन दन मृत मरियो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत, शासन दुख गर्त गरियो है। प्रेम भगत उदर है से नानक, कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सोच किरिया, चरण कमल हृदय प्रवतारी। साजन मीत सखा हर बंदप, जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है, नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात, विदे मन दर्श मग। पावक जरियो ना जात, रहियो जन धूर लग। नीर ना साकस बोर, चल है हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, छिदे हर नाम खग। उदम कर लागे बहु पांति, विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ। भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंध है बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पांत थाट है कर थटुआ। सवैये महले पहले के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता।

तुरत निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निरवैर रिदंतर श्रिष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियथ भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जोग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिर।

निवै खवै कस बिमल बीचार है एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परसे कल समुल वै।

ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਨਹਿਣੀ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ।

है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रदान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जीन सर्व सिद्धि कव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मबल सरा उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाद हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाज समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अमरीक भवजन तरिया।

गुर अमर पणित जै नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

जानियो सुपन एक प्रतख एक एक समह लीनो तीस एक अर पांच सिद्ध पैंतीस ना खीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरनियो गुरु अमरदास।

गुरु अमरदास परसी सिद्ध साधक असास है। गुरु अमरदास परसी है ध्यान लही है पौ मुक है। गुरु अमरदास परसी है अपौ लब्बे गौ चुक है। एक बिन दुग

सो दृढ़ नानक संग रहियो ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन आप नारायण कला तार जग मह परवरियो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार है नानक कुल निम्मल अवतरियो गुण करतार है उचरै गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दारी

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म

साध सलाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनख कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखर।

इव जोधकार कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सत

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सर अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दूर अंतर नासे सुख सागर पायो दिंत

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तैं जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै।

है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उच्चर तो सहज सरोवर बास।

गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु सरन भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाणे अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारे शब्द रिद विचार काम क्रोध खोए जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

अहंकार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरम

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास राड़।

ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सत्य है घर।

गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवै, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै, गुर कर सच बीचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन, अगन कट है सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह, जिन गुरु ना देखो ना हो कियो, ते अकियत संसार मह, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे, हुन दुखन नास सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान।

तेरे जौहर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है त्याई अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उदरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाई है हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है।

जी तारहु मानस जन्म देह निस्तारहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौहो जुग गुर सेवा कर फल लहियन बंद है जो चरण सरण सुख पावे है परमानंद गुरमुख कहियन प्रताख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गति जीता है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंश है जाकी सरनं सतगुर गुर सेव अला

पाया, जग जन्म मरण भगा, ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जिन जन कै, तिन को पदवी उच भई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया, दिव दृष्ट कारण करन, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारन करन, प्रताप सदा गुर का घट घट, प्रगास भया जस जन कै, एक पढ़ है सुनह गाव है, प्रभाते है करह इशनान, इशनान करह प्रभात सुद मन, गुर पूजा विद सहत करन, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह, रहया पूर बहु विद वर्णं, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारन तरन, जिन्हों बात निश्चल ध्रुव जानी, ते जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुद्र रुदर खिन इक मह, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर।

यो देख रूप अत अनूप मोह महामग पहि किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्य ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आ

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सर्वर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

काल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम खेल किया अपने उशाहे दियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहे आसमाए सुतह सिद्ध रूप धरयो साहन कै साहे जियो सत साच श्री निवास आद

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन धर्म तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

दूर कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जां को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावै आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको शिव मन गह नात जात कबलास को।

सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल पण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो कल जोड़ कर सुजस वखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिरड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनपहो ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आलीना।

देखियत ताम स्यों अपार परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और है काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्ब मैं अर्जन गुर भगत कै हित पाई रहो मिन राम स्यों अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महातम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए।

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो।

अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जानियो भयो ते समसर सोई तरन गगन नव खंड मह जो

करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर लाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाहीं पौ नानक दुनिया कैसी होई।

अंतर तिसना आग जिन्ना वेलना तू बड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिलही वग साग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर पाई साला ही सालाहना ही सच्चा साला ही।

आई मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाई ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाय बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाई खुआई जो बन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाय पुत कलात मोह हेत है अंत बेली को ना सिखाई सतगुर सेवे सो सुख पाई नाओ वसै मन आई नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी।

ही अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन ना करहे विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की रखदा हौ सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक ता का दास। माया पोयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए। बिख का मारन हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिन को पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर्म

दूत ज्यो पिता नाम तिस जाय हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआय हर गुरमुख कृपा धारियन जन बिछड़े आप मलाय जन नानक।

ਤਾਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀਐ ਸਾ ਧਨ ਸੁਤੀ ਨਿਚਿੰਦ ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬ

बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमान दे अंत न पारा वार। हर कृपा कर।

नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण दिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर जपया।

बहु चित्तवदी बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

पाए। सत संगत हर मेल प्रभ, हर नाम वसै मन आए। जन्म मरण की मल उत्तर, जन नानक हर गुण गाए।

हर भावे बख्श मलाई मन आवण जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मुहि पलिटिया।

सदा सदा हर गुण रवहै। अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै। दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया। सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है। जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हउ मैं कर्म कमाव दे। सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हच्छे निर्मले। गुर कै शब्द सुभाई ओना मैल पतंग ना लगई। जे चलन सतगुर पाई मनमुख झूठ ना उतरै। जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन। गुर कै अंक समाई बुरा करे सो केहा सिज्जै। अपने रोहे आपे ही दज्जै मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै। गुरमुख होए इस सब किस सुज्जै। नानक गुरमुख मन स्यों लुज्जै। जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवेओ शब्द ना की तो विचार। ओए मानस जू

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब पर फड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठै मन तन पर फड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चाल चलंबलै नामड़ा लइए किस नाउ।

बोलना बुझ ना सका कार वण तिण त्रे पवन तुजै त्याएदा अन दिन सदा विहान बिन सतगुर किनै ना।

योग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे भवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख

प्रसाद वडभागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाय वाहो वाहो सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाहो वाहो सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाहो वाहो सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाहो वाहो सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाहो वाहो सतगुर

नानक सतगुर वाह वाह जिसते नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूर्ण।

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै दे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाई अन दिन रह आनंद नानक सहज समाई है।

मुख सद उजले इत सचै दरबार तिन बहदियां उठदियां कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले

संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिलिए प्रभ पाइए सब दुख निवारण हार मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए पुत कलत कुटुंब है माया मोह वधाए।

कूड करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग

आए जम्मन मरन ना चुकई हो मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लए छडाए सतगुर पुरख हर ध्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौजल।

पार लंघाए गुरसिखां की हर धूड़ देह हम पापी पी गत पाहे तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुर नानक मिलिया आए जम कंकर मार बधारियन

चोली हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

नाम कहर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार माया मनो ना विसरै मांगै दम्मा दम

नानक भजे सफल होहे ते काम। जेह बागुन गोविंद भजो करन सुनो।

नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम ना चेतई

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रास कहो नानक।

सो नर मुक्ता जान तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान।

नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे।

ਮੰਗਲੇ ਪੁਨ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ ਏ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪਾਂਚੋ ਨਾਰੀ ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦਸਾ।

ओदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पतमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औगुजरी

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख

हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गालवड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर

हम कीरे किरम सतगुर शरणाई तर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मुख और राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत हमरी रह रास रखाओ हर जन केवड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तब तस मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर्ष नाम न पाया ते पाहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखया लिखास तन तन सत संगत जित हर्ष पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्त वह उद्यम जा आहार हर जियो परया।

तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब ताप है जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी,

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कम सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो पहुंच।

सहस्ताव नयन नान नयन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामय जोत जोत है सोय हिद चानन सामय चानन होय गुरसाखी जोत प्रगट होय जोत भावे सु आरती होय हर चरण कामन मकरंद लोभत मनो आनंद नमय आई प्यासा।

मद देख फूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीन अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

क्रोध तर मिले सच पाईए गुरमुख सदा निरोध सची कारे सच मिले गुरमत पल्ले पाए तो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर।

बिन शब्दे परमाई है, दुबदा डोबे पूर मान रे शब्द तरो चित लाए, जिन गुरमुख नाम ना बूझया मर जन्म आवे जाए। रहाओ तन सूचा सो आखिए, जिसमें साचा नाव पय सच राती देहोरी, जेवा सच सुवाओ सची नजर निहालिए, बौड़ ना पावे ताओ साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए जलते ते पवन साजया, घड़ घड़ जोत समोए निर्मल मैला नाथिए, सब दरते पद होए यो मन साज संतोखिया, नजर करे तसमाहे पंच भूत सज पैरते, जोत सची मन माहे, नानक अवगुण विसरे गुर राखे पद तागे, श्री राग महला पहला, नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार, एक आवे एक जावही पूर परे अहंकार, मन हट मत्ती बूढ़ीए गुरमुख सच सो तार, गुरबिन क्यों तरिये सुख होए, ज्यो भावे त्यों राख तू मैं अवरना दूजा कोए। रहाओ आगे देखो डाओ जले, पाछे हरे अंगूर, जिसते उपजे तिसते बिनसे, घड़ घड़ सच भरपूर, आपे मेल मिलावही ताचे महल हदूर, साहे साहे तुस्तमला कदे राम सारे, ज्यो ज्यो साहब मन से गुरमुख अमृत पेयो, मन तन ते रातू तनी गर्भ निवार समेयो, जित्यो जगत त्यो पाया तिर पवन कर आकार, गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार, घड़ घड़ जोत निरंतरी बूझे गुरमत सार।

योग गोरमुख जिस हर मनस जिमेले गुर संजोग ताया कामण जे करी भोगे भोगण हार तिस्से नेहो ना कीजई जो दिसे चलन हार गुरमुख रवे सुहागणी तो प्रसेज पतार चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासया अमृत परया अघाए नानक सतगुर मीत कर अज पावे दर गए जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमतले हर बोल मान सच कसवटी लाई है तुलिये पूरे तोल कीमत किने ना पाई है हृद मान कमोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सत संगत सतगुर पाई है अहे निस शब्द सलाह रहाओ कद वखर तन रस लय पाइये गुर प्रगास ज्यों अगन मरे जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लग गई त्यों पौजल तरे तरास गुरमुख कूड़ न पावई सचरते सच पाए साकत सच न पावई।

निर्मल हौ सदबरेगारे जास हृदय जिन के हर वस तेत कट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुर मस्तक जिन को लिखया से गुरमुख रहे लिवलाय रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट बसे पारपूर गुरमत जिनी पिछाणिया से देख सदा हदूर जेन गुण तेन सद मन वस अवगुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बारे बिन नावे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया घर सोए अन दिन भगती रतया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओ

पर खोए, होमे गुरमुख खोइए, नाम रते सुख होए, मेरे मन अहे निस पूरही नित्यासा, सदगुर सेम हो पार जले, करगी माहे उदासा, हरहाओ गुरमुख कर्म कुमावे बिसे, हर बैराग आनंद, अहे निस भगत करे तिन राती, होमे मार निचंद, वडे भाग सत्संगत पाई, हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई, हिरदे नाम साए, अंतर लागना तामस मूले, विचों आप गुवाए, नाम निधान सतगुरु दिखा लिया, हर रस पिया अघाए, जिन किने पाया साध संगति, पूरे भाग बैराग, मन मुख फिरे न जाने सतगुर, होमे अंदर लाग, नानक सब दरते घर ना बरंगाए, बेन पैके ही लाग, श्री राग महला तीजा, घर ही सौदा पाईए, अंतर सब वस होए, खिन खिन नाम समालिए, गुरमुख पावे कोए, नाम निधान अखुट है, वडभाग प्राप्त होए, मेरे मन तज निंदा होमे अंकार, हर जीव सदा त्याए तू, गुरमुख एकंकार, अरहाओ गुरमुखां के मुख उजले, गुरसबदी विचार, हालत पलत सुख पाएं दे।

अमृत सत्या नाम है, कहना कछु न जाए, पीवत हू परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

करम कुमाए जात सत संजम नाम है विण नावे निर्मल ना होय पूरे भाग नाम मन वसे शब्द मिलावा होय नानक सहजे ही रंग वर्तदा हर गुण पावे सोय श्री राग महला तीजा काया साधे उर्द तप करे विचो होमे ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम ना कब ही पाए गुर के शब्द जीवत मरे हर नाम से मन आए सुन मन मेरे भाजे सदगुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है विघ भवजर शब्द गुर तरना हर हाओ त्रैगुण सभा तात है।

अंतर तेरे हर बसे, गुर सेवा सो पाए। अरहाओ सच बाणी सच शब्द है, जहां सच तरे प्यार। हर का नाम मन वसे, हम में क्रोध निवार। मन निर्मल नाम त्याई है, ता पाए मोख द्वार। हम में विच जग बिरसदा, मर जम्मे आवे जाए। मन मु शब्द ना जाननी, जसन पद गवाए। गुर सेवा नाओ पाई है, सच्चे रहे सुमाए। शब्द मने गुर पाई है, विचों आप गवाए। अनदन पगत करे सदा, साचे की लिवलाए। नाम पदार्थ मन वसया, नानक सह सुमाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी पुरखी सदगुर ना सेवयो। से दुखिए जुग चार, कर हुंदा पुरख ना पछाणिया। अभिमान मुठे अहंकार, सदगुरु क्या फिटकया। मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवयो। अब काज सवारण हार, मन मेरे सदा हर वेख अधूर। जन्म मरण दुख पर हर, शब्द रहा परपूर। हर हाओ सच सलाहन से।

चौजुगी सत्तो सत सुनाए, होमे मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए। इनको मैल खदूर है जो सत्य रखे लिवलाए, नदरी नाम ते आईये विण कर्मा पाया ना जाए। पूरे भाग सत संगत लहे सगुर भेटे च से आए, अनदिन नामे रत्या दुख बिख्या विचों जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए, श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार। दुबदा मैल चुकाइन हर राख्या उर तार, सच्ची बाणी सचमान सच्चे नाल प्यार। मन मेरे होमे मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार। हरहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लहे मिलाए। अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ न पाए। जिनको पूर्व लिखया सतगुर भेटिया तिने आए, विण नावे सब डूमणी दूजे पाए खुवाए। तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए, परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए। नदर करे प्रवे अपनी आपे लहे मिलाए, सबके सुनदा वेखदा त्यो मुकर पे आ जाए। पापो पाप कमाम दे पापे पचे पचाए, तो प्रभ नदर न आवई मन मुख बूझ न पाए। जिस वेखा ले सो ही वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग न टुटई, होमे पीड़ न जाए। गुर प्रसादी मन वसे नामे रहे सुमाए, गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्दे परम पुराए। मान रे निरकरवासा होए, राम नाम सालाए तू फिर आमन जान न होए। हरहाओ हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर न कोए, शब्द सलाही मन वसे सहजे ही सुख होए। सब नदरी अंदर वेखदा जय पावे तय दे, होमे सभा गणत है गणते नु सुख नाहे। बेकी कार कुमावनी बेखी माए सुमाहे, बिन नावे ठौर ना पायनी जंपर दूप सहाहे। जियो पिंड सब तिसदा तिसे दा आधार, गुर प्रसादी बुझिए ता पाए मोह द्वार। नानक नाम सलाहे तू अंत न पारा वार, श्री राग महला तीजा तिना आनंद सदा सुख है। जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाए प्यार, कृपा करके अपनी देतोन भगत भंडार।

तास लहे महल हरहाव अवगुणवंती गुण को नहीं बैण न मिले हदूर मनमुख शब्द न जानी अवगुण सो प्रादूर जिन्नी सच पछाणिया सचरते परपूर गुरशब्दी मन बिद्या पर मिलया आप हदूर आपे रंगन रंग्योन शब्दे लय उन मिलाए सच्चा रंग न उतरे जो सचरते लवलाए प्यारे कुंडा पव सके मनमुख बूझ न पाए जे सतगुर मिले सो मिले सच्चे।

सच खटना सच रास है, सत्य सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़े, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर के शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे, छे जन सब दे सोने इस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते आव मेले करतार, गुरमती सच सलाना जेदा अंत न पार आवार, धड़कड़े आपे हुकम से हुकमे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है हौमे विचों कोय, सातन नावे बारी अवगुण मंती रोय, सच सलाही सच

ते शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगले उपाव त्याग, गुर पूरा आराध नित एक सकी लिवलाग। अरहाओ इको भाई मित एक, इको मात पिता एक सकी मन टेक है। जिन जियो पिंड दिता, तो प्रमणो ना विसर जिन सब केश।

प्रसादी मुख उजल जप नाम दान इसनान काम क्रोध लोभ विस्य तड़िया सब अवमान पाया लाहा लाभ नाम।

संग सुमाओ हर जपिए आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेज सच सिंह मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप।

संता संगत मानस प्रीतम भग सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन इस नाम।

विचार क्या छोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा तित्तर वसे सोहलड़ी

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ये करनी सार। आव छोड़ सब होए एना, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, तू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना। रघाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत् समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। कैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर न आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

पाए, पुर राखे से उबरे हते स्यों निवलाए। हरजी सबत पछाणीए साजरते गुरवाक, तेत तन मैल न लग गई सच कर जिस ओ ताक। नदर करे सच पाईए बिन ना वेख्या साक, जिन्नी सच पछाणिया से सुगिए जू चार। हो मैं तिस ना मार के सच रखिया उर तार, जग में लहा एक नाम पाई गए गुर विचार। सचो वखर लादिए लाभ सदा सच रास, साची दर गए बैसई

आओ सद गबादो काल को बिन गुर काल अफार सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार हों तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ गुर राखे से उबरे

सच्चा मन्या तेन मनसा चित ध्यान मान मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए साजन मिले सुख पाया जम दूत मोए बिगकाए नावे अंदर होमसा नाव वसे मन आए बाज गुरु गुबार है बिन शब्दे बूझ न पाए गुरमति प्रकाश होए सच रखे लिवलाए तिथे काल ना संचर है ज्योति ज्योत सुमाए तू है साजन तू सुजान तू आपे मिलन हार गुर शब्दी साल आई है अंत न पारा वार तिथे काल ना अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार हुक्मी सबे उपजे हुक्मी कार कुमागे हुक्मी काले वस है हुक्मी सच सुमागे नांग जोत पावे सोती है ये ना जनता वस किश नागे श्री राग महल्ला पहला मन झूठे तन झूठ गए जेवा झूठी होए मुख झूठे झूठ

प्रावे रंग सच सुहागण सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ू गर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एक और अवर दूजा अवर न कोय श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पय पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कसक सवट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सबको दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मनमुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए शब्द पे सुखोय, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधक नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाउ सब बलिहारे जास, चौदुख मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगती पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

तेर रहे सुहाग। भाई रे अवर नही मैं ताओ, मैं तन नाम निधान है गुरदिया बल जाओ। अरहाओ गुरमत पात साबा तिस, तिसके संग मिलाओ। जिबन कड़ी ना जीव बिन ना वे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला किले ना गीटाओ। बिन सतगुर नाओ ना पाई है बिन नावे क्या साओ। आए गया पछतावन जो सुन्ये कर काओ। बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत। तावलग मैल ना पाई है जावलग साज ना चीत। सब दरपे कर बाई है निर्वाणी पद नीत। हाँ गुर पूछो अपने गुर पुछकार कमाओ। शब्द सलाही मान वसे हौ में दुख जल जाओ। सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ। शब्द रते से निर्मल तक काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार। सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर गए

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरमे आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये, जो बनबाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बा सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सजाणिए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार। इकत तागे रार मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए, वापारी बन जा रहे आए वजो लखाए। तार कुमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कतने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है

साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाई है पये किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटी है लिखिया लेख रजाए बिन

सिद्ध बहे देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार दार कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी।

है, क्या माया कर्म कमाए, तो सुख ए जीव बद है, हम में कर्म कमाए, पिन शब्दे परम न चूकई, ना विचों हम में जाए, पिन प्रीति भगत न होवई, पिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम में मारिए, माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए, गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण न जापनी, बिन गुण भगत न होए, भगत वछल हर मन मसया, सहज मिलया प्रसोए, नानक शब्दे हरसा लाइए, कर्म प्राप्त होए, श्री राग मोहल्ला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु कीना, अपे परम पुलाए, मानव कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसे मन आए।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागणी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां रे दे सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हो सतगुर विटो कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर्म मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा।

तान चितवै तान संचय बन जा रहा मित्र। हर नामा हर ना सुमाल, हर नामा हर घर कदे ना सुमाले, जे होवे अंत सुखाई। यो तन संपे माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनु कृपा करे गुरु मिले, सो हर हर नाम सुमाल। कहो नानक तीजे पैरे प्राणी, से जाय मिले हर नाल। चौथे पैरे रहन के वन जा रहा मित्र, हर चलन वेला आंदी। कर सेव पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्र, सब चली रहन वेखांदी। हर सेव खिन खिन टिल मूल न करे हो, चित अस्थिर जुग जुग हो वो। हर सेती सदमान हो रलिया, जन्म मरण दुख खोवो। गुर सतगुरु स्वामी भेद न जानो, जित मिलहर भगत सुखांदी। कहो नानक प्राणी चौथे पैरे, सफल हो रहन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां, पहले पैरे रहन केवन जा रहा मित्र। तार पाए ता उदरे माहे, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र। तर मोलत कर्म कमाहे, मोलत कर दी नी कर्म कमाने। जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुध बनता, तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सुकर्म कराए आपे, इस जन